0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: प्रतीति कपि भजे सदा धरे उर ध्यान तैके कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जब रावण सीता माँ को हर के ले गए थे, श्री रामचंद्र जी ने संदेशा भिजवाया था किसके हाथों? हनुमान जी के हाथों। हनुमान जी संदेशा लेके सीता माँ के पास पहुंचे, सीता माँ देख के घबरा गई, बोली कौन है तू? हनुमान जी कहते मैं रामदूत हूं। सीता माँ कहती ना तू रामदूत नहीं हो सकता, अगर तू रामदूत होता तो श्री रामचंद्र जी ने मेरे लिए कोई ना कोई निशानी भेजी होती। हनुमान जी कहते हाँ ये देखिए निशानी भेजी है, ये अंगूठी भेजी है, बात इतिहास की है।

हनुमान जी लंका में पहुंच गए, अपना काम करने लगे। रावण देख के घबरा गया, कौन मेरी लंका में आ गया। रावण ने ऐलान किया, जाओ पतंगबली महाराज को बंदी बना के लाओ। बंदी बना के लंकेश के दरबार में पेश किया। सारी बातें होने के बाद रावण ने बोला, हनुमान ऐसे नहीं मानने वाला, ऐसा करो इसको एक सजा सुनाते हैं। ऐसा करो, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी।

अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए गाना आपने, क्योंकि गुरबाणी में भी लिखा है नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। जे सरबत का भला मांगेंगे, दुनिया का भला मांगेंगे, तो शायद ये शुरुआत हमारे से कर देंगे।

0: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर भजन जीवन धारा सुप्रभात सुनते
1: रहिए। तप दया दान सतयुग में सत्य बोलते थे, झूठ बोलने लगा तो सतयुग चला गया। आ गया त्रेता, त्रेता में सब महात्मा लोग जंगल में जाकर के तपस्या करते थे, तप करते थे। तब चले आए शहर में, एगो जंगल में नहीं है, तप चला गया। तो द्वापर आया, द्वापर में 56 करोड़ जदवंशी रामे जी का वंशज था, जो अपने में लड़कर मर गया। दया चला गया, धर्म के 3 गो पैर टूट गया। तब आया है कलयुग, कलयुग में एक दान बचा हुआ है। जिस दिन दान देना बंद हो जाएगा, उस दिन धर्म का ये भी चरण टूट जाएगा।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल।

0: सोसाइटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।

ये एनटीडी है। तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहां पे इन्फेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है, वन इज एक्यूट यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देर इज फीवर और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडिमा एक होता है, लिम्फेडिमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं, स्क्रोटल एरिया होता है, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों के किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है ये लिम्फोडिमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रोफाइलेरिया बेबी उसके अंडर जाता है शरीर में और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रोफाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए ब्लड टेस्ट कराया नेगेटिव आया, लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, डब्ल्यूएचओ का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त रक्त सैंपल लिया जा रहा है और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती हैं जिसको सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में चलाया जाएगा, उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे, इसीलिए आपको इसमें इनवाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं डीए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था, पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा, एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो, अदरवाइज एवरीबडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है,
आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूँ, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे, जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ये विदेश से आई हैं और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए, सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड

0: बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है। तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई।
1: क्या
0: जो
1: बात
0: सेकेंड कैटेगरी है
1: कर
0: अब्सेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम। तो ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके, या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से, और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया, हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार निम्फोडिमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सके। हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनेमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सेंट्रिश की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनेमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, डीईसी एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीईसी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रो फाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृमि जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म, ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा अनीमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जिसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुए होते हैं आइवरमेक्टिन से, वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रिपल ड्रग में, न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुए, ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस, यू शुड एक्चुअली अप्रोच टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राई टू गेट द मेडिसिन एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है, 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक दो गोली, 140 से 160 तीन गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको चार गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं ये डीईसी है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है, 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को दो गोली, और 15 से बड़े को तीन गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसके मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स, क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया। तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले, क्या होगा, उल्टा आपको आके काट ही रहेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहां हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैग छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम हमारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहां जो भी नई चीज आती है

0: पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है। तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है। दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है। पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए। यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
1: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
0: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
2: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
0: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
2: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
1: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
0: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
2: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
0: मुफ्त? सच में?
2: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहां व्यवस्था हो वहां यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है?
0: सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है,
2: इसीलिए तो मैं कहती हूँ माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक

0: प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी, बाकी सब शोर है।
1: श्रोताओं जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
0: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
0: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या HPV वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
0: यही तो समझदारी है। जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
1: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
0: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
0: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
1: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
0: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
0: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना, हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
1: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं, हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां? ये भी गलतफहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए।

0: सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
1: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती। और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए। पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए। बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
1: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
2: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
1: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
2: कहना, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
2: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई है।
1: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
2: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
2: और मेरी तरफ से एक बात और, माँ होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो

0: अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यूविन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
1: नमस्कार, मैं मनोज वाजपेयी। मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गांव में बीता है और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है, इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं, मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है। बस एक आखिरी बात, जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू मक्खी के खात्मे के लिए आपके घरों में आए तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा काला आजार रोग।
2: स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: यो, सुन लो भाई, सुन लो बहना, फाइलेरिया को भगाने का मौका नहीं गवाना।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहां हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नई है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। मां थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूं। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही इसका एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम हमारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहां जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहां व्यवस्था हो वहां यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है?
2: सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है।
1: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे, और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता

0: सत्ता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
2: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
0: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
0: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
2: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
0: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
1: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
0: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
2: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलतफहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
0: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
0: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
2: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
0: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा।

0: फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
1: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
0: कहना, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
1: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
0: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई है।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
0: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
1: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
0: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
1: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UWIN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
1: अरे बहन, कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
2: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
2: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चेदानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
3: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनो एंडोस्कोपी केल जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
4: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यू टीमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज गर्ग रोड मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
5: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
6: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
7: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
0: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।
8: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
9: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं है। मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
10: नो पेन, नो स्कार, नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स द विंसी क्लिनिक।
4: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128। एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गर्ड रोड, मेरठ।
1: अरे अंकल सुनिए जरा।
11: हाँ बेटा बोलो।
1: अंकल जी वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
12: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियांगर के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर वन आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
13: डॉक्टर प्रियांगर, MBBS, MS, ऑप्थल्मोलॉजी, FNB, VR सर्जन, FICO, लंदन, FAICO, FVRS, PDCR, रेटिना सर्जन एवं ROP स्पेशलिस्ट
14: विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
4: For consultancy, you may visit Newtima Hospital, opposite LLRM Medical College, Gur Road, Meerut. You may contact 9837056192.
15: Dr. Priyank Garg, Newtima Eye Care. आओ अच्छा देखें।
0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है, और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक, जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
16: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
17: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवा

0: के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किशोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: साल 1857, तारीख 10 मई, जब मेरठ की धरती से उठी एक चिंगारी ने पूरे देश में आजादी की मशाल जला दी थी। मेरठ की इसी धरती से आजादी की मशाल जलाने वाले शहीद धन सिंह कोतवाल और उन चाबाज सिपाहियों को नमन, जिन्होंने फिरंगियों की चूले हिला दी। आज क्रांति दिवस पर आइए उस शौर्य को याद करें जिसने हमें आजाद भारत का सपना दिखाया। सलाम उन शहीदों को। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के क्रांति दिवस स्पेशल कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे कवित्री शिक्षिका नीलम कुमार नील जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM की टैगलाइन भी है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, माने राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम यहां पर हम आपको सुनवाते रहते हैं। और आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं नीलम कुमार नील। आप शिक्षिका भी रह चुकी हैं केंद्र विद्यालय में और कवित्री भी हैं। सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका।
1: धन्यवाद।
0: क्योंकि मैम आपकी देशभक्ति कविताएं हमें सुननी है और आगे थोड़ी बात भी करनी है, तो शुरुआत आपकी देशभक्ति कविताओं से हम करना चाहेंगे।
1: मेरी पहली कविता सैनिकों के नाम है कि उनके भाव क्या हैं। चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे, चिरागे देश भक्ति का जला खुद को

0: चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे।
1: क्या बात है।
0: दफन कर दी जवानी ऐ वतन शानों अकीदत में, दफन कर दी जवानी ऐ वतन शानों अकीदत में, तिरंगे की लाज रखते रखते तिरंगे को कफन बना बैठे। तिरंगे की लाज रखते रखते तिरंगे को कफन बना बैठे। चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे। वतन पर मर मिटने की ऐसी अलख जगा दी है, कांटों का हार गले में डाल मिट्टी।

0: देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे। वो बसंत बहार होली दिवाली कहां उन्हें मंजूर थे। वो बसंत बहार होली दिवाली कहां उन्हें मंजूर थे। खुद को गोली से सजा, खुद को गोली से सजा, यूं अपना अंग रखा बना बैठे। खुद को गोली से सजा, यूं अपना अंग रखा बना बैठे। चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे।
1: क्या बात है। एक अच्छी कविता की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक मतलब होता है, और उसे लिखने वाले कवित्री की भी अपना एक सफर होता है। आपका थोड़ा सफर और इस कविता के पीछे की प्रेरणा, दोनों हम आपसे जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे।
0: ये कविता भी मैंने पुलवामा कांड से इंस्पायर होके ही लिखी थी। जब सैनिक जो थे हमारे बॉर्डर पर युद्ध कर रहे थे, तब से प्रेरित होकर मैंने कविता लिखी थी। और उस समय शायद मेरी कहीं ड्यूटी लगी हुई थी, तो अचानक से एक थॉट दिमाग में आया और मैंने फट से उसको, एक पेपर कहीं पड़ा हुआ था, एग्जामिनेशन रूम में थी, वहां से कहीं से पेपर मैंने उठाया और उस पर लिखी दो लाइन, और उसके बाद वो कविता बनती चली गई थी। तो ऐसे इस कविता की मेरी शुरुआत हुई थी।
1: क्या बात है।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है, और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें, एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है, एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
2: क्रांति दिवस के अवसर पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीत, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के क्रांति दिवस स्पेशल कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे कवित्री शिक्षिका नीलम कुमार नील जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ,
1: क्योंकि आज देशभक्ति कविताओं में हम ओतप्रोत हैं और इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आपकी अगली कविता का।
2: हाँ, अगली मेरी कविता है आजाद मेरी मातृभूमि।
1: जी।
2: आजाद मेरी मातृभूमि, आजाद फिजाएं, आजाद मेरी मातृभूमि, आजाद ये फिजाएं, आजाद गिरी, आजाद निर्जर, आजाद बही हवाएं, आजाद बही हवाएं। ए वतन तेरे श्रृंगार को, ए वतन तेरे श्रृंगार को बलिदान की बिंदी लगानी थी, ए वतन तेरे श्रृंगार को बलिदान की बिंदी लगानी थी, तुझे आजाद करके दम लेंगे हमने मन में ठानी थी। जानते थे इससे कुछ कम, जानते थे इससे कुछ कम नहीं तुझे मंजूर होगा, इसीलिए तो वंदे भारत नारा जगत में पूर्ण होगा। जानते थे इससे कुछ कम नहीं तुझे मंजूर होगा, इसीलिए तो वंदे भारत नारा जगत में पूर्ण होगा। आजाद 78 वर्ष हुए हैं, आजाद 78 वर्ष हुए हैं, सदियों आजाद ही रहना है। आजाद 78 वर्ष हुए हैं, सदियों आजाद ही रहना है। एक नूतन भारत विकसित भारत का स्वप्न परिपूर्ण करना है, का स्वप्न परिपूर्ण करना है। हूँ कर्जदार इस मिट्टी की, हूँ कर्जदार इस मिट्टी की, शपथ आज मैं लेती हूँ। हूँ कर्जदार इस मिट्टी की, शपथ आज मैं लेती हूँ। सत्य अहिंसा ईमानदारी की फसलें यहाँ पर बोती हूँ, फसलें यहाँ पर बोती हूँ। धन्य हुआ जीवन मेरा, धन्य हुआ जीवन मेरा जो इस धरा पर जन्म हुआ, धन्य हुआ जीवन मेरा जो इस धरा पर जन्म हुआ। फकत मिलूं इस माटी में, फकत मिलूं इस माटी में, नश्वर जो शरीर हुआ, नश्वर जो शरीर हुआ। देवतुल्य तटनी सरिता, देवतुल्य तटनी सरिता आभ कंठ को तरा गए, देवतुल्य तटनी सरिता आभ कंठ को तरा गए। कर बद्ध प्रणाम ही मातृभूमि, कर बद्ध प्रणाम ही मातृभूमि, आजाद उन्मुक्त बना गए, आजाद उन्मुक्त बना गए।
1: क्या बात है।

तारीख 10 मई साल 1857, जब मेरठ की बैरको से उठी एक चिंगारी ने समूचे भारत में आजादी की आग लगा दी। धन सिंह कोतवाल की ललकार और क्रांतिकारियों की हुंकार ने फिरंगियों के सिंहासन को हिला दिया था। आज क्रांति दिवस पर नमन करें उन वीरों को जिन्होंने आजादी का पहला बीज बोया। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के क्रांति दिवस स्पेशल कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे कवित्री शिक्षिका नीलम कुमार नील जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ। क्रांति धारा मेरठ में आज हम बैठे हैं और 10 मई 1857 इस तारीख की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? एक कवित्री के तौर पर आप इस तारीख को कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तारीख के विषय में, इस दिन के विषय में?
1: 10 मई 1857, ये भी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, क्योंकि मैं एक शिक्षिका रही हूँ, तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने किन परिस्थितियों में ये क्रांति की शुरुआत की थी, क्या क्या उन्होंने दुख झेले थे। इन्हीं चीजों से हम अपने बच्चों को अवगत कराते हैं। और वो कैसे कराते हैं आजकल, क्योंकि TLM का बहुत जोर है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो हम क्लासेस में ही ऐसा कुछ क्रिएट कर देते हैं, ऐसे कुछ बनाते हैं कि अलग अलग तरीके के सेनानी बनाएंगे, फिर उनकी रैली कराएंगे, और उसमें जो एक देशभक्ति का जज्बा है कि क्या उस टाइम हुआ था, वो सब हम सिखा के बच्चों को ये बता सकते हैं कि कैसे क्या देशभक्ति होती है और क्या उस टाइम थी। आज भी कुछ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे देश के लिए, तो ये सब सोच के मतलब जो रोंगटे है ना वो खड़े हो जाते हैं।
0: क्या बात है मैम, जो भी हमारे अतिथि यहाँ पर उपस्थित होते हैं उनसे एक प्यारा संदेश, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग ऐप के माध्यम से और फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हमें सुनते हैं, तो उनमें युवा भी होते हैं, छोटे बड़े सब होते हैं, तो उनके लिए हम जरूर चाहेंगे आप, क्योंकि शिक्षिका भी हैं, कवित्री भी हैं, तो कविता के माध्यम से या अपने वचनों के माध्यम से उन तक कोई संदेश आप जरूर पहुंचाएं।
1: आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सभी को संदेश देना चाहूंगी कि हम अपने देश को संभालें, हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, देशभक्ति का जज्बा हमें रखना है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आज आप हमारे साथ जुड़ी और इतनी प्यारी प्यारी देशभक्ति कविताएं सुनाई, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है श्रोताओं आपको भी पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर आकर, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हम आपको मिल जाते हैं।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: साल 1857, तारीख 10 मई, जब मेरठ की धरती से उठी एक चिंगारी ने पूरे देश में आजादी की मशाल जला दी थी। मेरठ की इसी धरती से आजादी की मशाल जलाने वाले शहीद धन सिंह कोतवाल और उन चाबाज सिपाहियों को नमन, जिन्होंने फिरंगियों की चूले हिला दी। आज क्रांति दिवस पर आइए उस शौर्य को याद करें जिसने हमें आजाद भारत का सपना दिखाया। सलाम उन शहीदों को। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

क्रांति दिवस के अवसर पर सुनते रहिए देशभक्ति गीत सिर्फ आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

वो सिपाही नहीं वतन के रखवाले थे। उनके पास आधुनिक हथियार तो नहीं थे, पर सीने में फौलादी जिगर और आंखों में आजाद भारत का सपना था। मेरठ की माटी के उन अमर शहीदों को याद करने का दिन है आज, क्रांति दिवस। शहीदों के बलिदान को हमारा कोटि कोटि नमन। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और इस वक्त अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कपिल, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। सर, स्वागत है आपका।
1: जय हिंद एंड थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपके साथ में जो है इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ और अपने फैकल्टीज और अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ अच्छा यहाँ बता पाऊंगा।
0: सर, सबसे पहले आपके विजन के बारे में एंड आपके डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहेंगे।
1: जो हमारी विश्वविद्यालय है, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, उसकी कुछ कोर वैल्यूज हैं जैसे शिक्षा, सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वो सारी भावनाएं, सारी वैल्यूज जो है वो दिखती हैं, और बच्चों को इंजीनियरिंग के साथ में हमारी कल्चरल वैल्यूज को सिखाया जाता है, उनको संस्कार सिखाए जाते हैं, उनको सोसाइटी में भविष्य में इंटरमिंगल होना है वो चीज सिखाई जाती है। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ में हम तकनीकी जो शिक्षा है उसको हम बच्चों तक पहुंचाते हैं, बच्चे उसको ग्रहण करकर और देश के मूल्यवान नागरिक बनकर समर्पित होते हैं। और इसी क्रम में बच्चों के साथ में हमारी फैकल्टी भी, हम हर साल उनके लिए कुछ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, और उन प्रोग्राम्स को करवाने के लिए जो इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, और जो इंडस्ट्री में उस टाइम पर जो चीजें चल रही होती हैं वो हमारे वो शिक्षकों को उनके ऊपर ट्रेन करते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है और जो एकेडमिक्स है उसके बीच में कोई गैप ना रहे, कोई अंतर ना रहे। और देखा जाए तो हमारे पास में अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल में अधिकतर सभी ब्रांचेस हैं। हम अगर शुरुआत करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो हमारे साथ में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी कई सारे कंसंट्रेशंस हैं, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है पहला, दूसरा है बिग डेटा एनालिटिक्स, तीसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग, चौथा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कंप्यूटर साइंस के कंसंट्रेशन हैं। इसके साथ में हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मतलब एविएशन में हमारे पास में कोर्सेज हैं, हमारे पास डिफेंस में कोर्सेज हैं, हमारे पास मास्टर्स में अधिकतर सारे कंसंट्रेशन हैं, वो चाहे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हो मास्टर्स, चाहे कंप्यूटर साइंस में, अधिकतर सभी ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन में हमारे पास में कोर्सेज हैं। तो ये सब चीजें संगठित करती हैं एक अच्छी शिक्षा पद्धति को, और जो बच्चे उसको ग्रहण करते हैं और जिस चीज में उनकी रुचि होती है उसी में वो अपने आप को एडमिशन लेकर उस चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमने कई सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं, जिसमें अभी हमने फिलहाल हमारी जो काउंसिल है, टेक्निकल काउंसिल है, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उससे हमने AICT आइडिया लैब जो होती है उसके लिए हमने ग्रांट लिया है, हमें AICT ने अप्रूवल दिया है, और उसके ऊपर हमने कई करोड़ रुपए लगा के हमारी एक आइडिया लैब तैयार हुई है, जिसके अंदर सभी मशीनें बिल्कुल नए स्तर की है, बिल्कुल जो मार्केट में ट्रेंडिंग है टेक्नोलॉजी उसके ऊपर बेस्ड है। बच्चे उस AICT आइडिया लैब में जाकर जो मार्केट में रिक्वायर्ड स्किल्ड है उनको डेवलप करते हैं। अभी हमने फिलहाल में ही अगर देखा जाए तो हमने एक अन्वेषण इवेंट होता है जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज करवाती है, उस अन्वेषण के अंदर हमारे बच्चों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्थ रीजन में हमारे बच्चों ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, और उसके अंदर 30 यूनिवर्सिटीज आई थी, 30 यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों ने कॉम्पीट करके फर्स्ट रैंक लेके आना, वो जो हमारे प्रयोग है, हमारे प्रयास है, चाहे वो AICT आइडिया लैब है या और बच्चों के लिए टीचर्स के लिए जो रिसर्च फैसिलिटीज हमने यहाँ डेवलप की है उसके अंदर बच्चे जाके टीचर्स जाके जो काम करते हैं उसी का कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन है।
0: सर, डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फैकल्टीज हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: जहां तक बात आती है हमारी फैकल्टीज की, तो फैकल्टीज हमारी इस टाइम पर बड़ी अच्छी है, मैं कहूंगा कि अनपैरेलल्ड मैच है। आप इस पूरी बेल्ट में देखेंगे तो जो शानदार सेट हमारे पास में फैकल्टीज का वो शायद ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता हो। अधिकतर सारी फैकल्टीज हमारे पास में वो PhD होल्डर्स हैं और IIT से ग्रेजुएट हैं, NIT से ग्रेजुएट हैं, वो बच्चों के साथ में जो अच्छी स्किल्स हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग देती हैं। और जहां तक बात है बच्चों को हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं, बच्चे जो हमारे साथ में पढ़ रहे होते हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब बच्चे इंजीनियरिंग करता है तो उसके बाद में उसको गेट की तैयारी हम कराते हैं, जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स में नौकरी निकलती है उसमें बच्चे एलिजिबल होते हैं गेट क्वालिफाई करके। तो वो सब करने के बाद में बच्चा जो है जब यहाँ पर तैयारी उसको मिल जाती है, बच्चे को कहीं बाहर कोई अलग वर्टिकल उसको तलाशना नहीं पड़ता है। पहले क्या होता था कि बीटेक करने के बाद में बच्चा जो है वो इंडस्ट्री का जो गैप है उसको फिल करने के लिए वो दिल्ली, नोएडा में जाके ट्रेनिंग किया करता था, पर आज की डेट में हमने इंडस्ट्री से पार्टनरशिप की है और उन इंडस्ट्रीज को हम अपने कैंपस पे लेके आए हैं और वो हमारे कैंपस पर ही बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं। और बच्चा जो वो ट्रेनिंग लेने के लिए पहले बहुत दूर जाया करता था, वो आज उसको यहीं पे मिल जाती है। हमारे कैंपस के अंदर वो सुविधा हमने उपलब्ध करवाई हुई है। हमने कई सारी यूनिवर्सिटीज के साथ में MOUs किए हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए। हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए हैं। ह्यूस्टन टिलोटसन यूनिवर्सिटी के साथ में भी हमारे कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम है जहां पर हमारे बच्चे वहां पर जा सकते हैं अमेरिका और अमेरिका के बच्चे यहां पे आ सकते हैं। ऐसे ही हमने कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो फ्रांस की और जर्मनी की है, उनके साथ में भी कुछ MOUs किए हैं जहां पर बच्चे स्टूडेंट एक्सचेंज में जा सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ में हमारे बच्चे जो है वो भविष्य की तैयारी करते हैं और एक अच्छे नागरिक बनते हैं। नागरिक के साथ में एक अच्छे टेक्नोक्रेट बनते हैं जो देश की उन्नति में और भागीदारी में एक अच्छे तरीके से सहयोग देते हैं।
0: सर, आज के टाइम में जहां बच्चे ऑनलाइन सीख रहे हैं या AI की हेल्प से सीख रहे हैं, ऐसे में इंजीनियरिंग का भविष्य आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, जहां तक बात है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखने की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक एडेड एडवांटेज है जो पहले बच्चों को नहीं मिलती थी, है ना। अब मिलना शुरू हुई है तो इसको बच्चे एडेड एडवांटेज के तौर पर लें, नहीं तो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का काम है वो YouTube पे नहीं चल सकता। YouTube पे आप खाली लर्निंग कर सकते हैं, पर अगर आपको जो है टीम वर्क में काम करना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। आपको लैब एक्सपोजर लेना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। आपको और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेना है तो आपको इंडस्ट्री में जाना होगा। तो जो गैप है, जो टीम वर्क और जो मेंटोरशिप है, जो वो टीचर के सामने बैठ के बच्चा अपनी प्रॉब्लम जब रखता है, टीचर उसके ऊपर 1-to-1 उसकी काउंसलिंग करता है, वो सब चीजें यूनिवर्सिटी में ही कैंपस में ही मिल सकती है, वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो यूट्यूब को बच्चा जो है एक एडेड एडवांटेज ले और उससे ज्यादा कुछ ना, उसकी एक फैसिलिटी है।
0: ठीक है सर, अब आगे बढ़ें और बात करें AI को लेकर, क्या कहना चाहेंगे?
1: AI से तो मैं ये देख रहा हूं पिछले काफी समय से कि AI जो है वो अगर ना हो तो आज के समय में आधे लोगों की जॉब चली जाएगी। लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए AI के ऊपर और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। आने वाले समय में क्या होगा कि जो इंजीनियर्स, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो AI नहीं सीखेंगे, उनके लिए सीखना मजबूरी होगी, नहीं सीखेंगे तो वो शायद कॉम्पीट ना कर पाए अपनी स्किल्स में। क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्किल्स सीख के आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, वहीं पर नॉर्मल स्किल्स के साथ में किसी इंजीनियर ने AI की भी हेल्प ली हुई है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 4x बढ़ जाती है, 5x बढ़ जाती है। तो जब 5x वाला एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री के पास में अवेलेबल होगा तो वो नॉर्मल प्रोफेशनल क्यों लेगी। तो AI सीखना सबकी मजबूरी बनेगी और वो बहुत अच्छा भी होगा, क्योंकि AI जो काम आप नॉर्मली जो है पूरे दिन में करते हैं, AI उसको 5 मिनट में आपके लिए फैसिलिटेट कर देता है। तो आपका पूरा दिन बचता है, वो पूरा दिन आपके लिए और वैल्यूएबल चीजें करने के लिए बचा हुआ है, आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं।
0: सर, एम्प्लॉयबिलिटी गैप भी आजकल थोड़ा बढ़ चुका है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी गैप इसलिए है कि बच्चा कॉलेज आता है, आज की डेट में थ्योरी पढ़ता है, एग्जाम पास करता है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्जाम पास करना है। इंडस्ट्री एग्जाम पास नहीं मांगती है, इंडस्ट्री मांगती है उसके अंदर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी प्रेजेंटेशंस, उसका डिसिप्लिन, उसके अंदर और वैल्यूज जो इंडस्ट्री में चाहिए होती है वो चीज मांगती है। बच्चा सिर्फ पास होना जानता है। वो गैप हटेगा जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होगी, स्किल एनहांसमेंट की बात होगी, तो ये गैप अपने आप हट जाएगा। हम मोर ओवर जो है फोकस करते हैं, जो आमतौर पर जो लोग फोकस करते हैं वो करते थ्योरी के ऊपर। हमारी जो अप्रोच है सुभारती के अंदर वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो इन्हीं सभी सोच के साथ में बच्चे को हम शिक्षा देते हैं। इंजीनियरिंग शिक्षा जो है वो इन्हीं पद्धति के ऊपर दी जाती है। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हम लैब के अंदर टाइम उसका स्पेंड करवाते हैं, तो जब वो स्किल उसकी डेवलप होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तो गैप अपने आप खत्म हो जाएगा।
0: सर, कोई नए कोर्सेज जो अभी स्टार्ट हुए हों उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे?
1: देखिए, हमने कई सारी क्रॉस डिसिप्लिन कोर्सेज को भी यहाँ पर स्टार्ट किया है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जनरेटिव AI को तो हमने पूरा सारे डिसिप्लिन में हमने डाल दिया है। और आप मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल में हम ऑटोमेशन में आ जाते हैं, मैकेनिकल प्लस ऑटोमेशन आ जाता है। हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के साथ में हम जो ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एम्बेडेड सिस्टम के साथ में IoT की बात करते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी जो चीजें हैं ये बड़ा हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए और हम रेडी हो रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की तरफ।
0: सर, अब बात करें स्टार्टअप्स की या बात करें प्लेसमेंट की, प्रायोरिटी पर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
1: देखिए, जहां तक बात आती है प्लेसमेंट्स की, मेरा मानना है प्लेसमेंट्स भी जरूरी है, बट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है और हमारे जो संस्थापक महोदय हैं उनका भी विचार है कि बच्चों को स्किल्ड बनाकर हम बच्चों को नए नए उद्यम जो है वो शुरू करवाएं। स्टार्टअप इंडिया के तहत हम उनसे स्टार्टअप खुलवाएं, उनके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उनकी स्किल्स डेवलप करवाकर उनसे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव, उनके अच्छे अच्छे कोलैबोरेशन करवाएं। उसी क्रम में हमने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल की स्थापना की, हमने स्टार्टअप सेल की स्थापना की, जो बच्चों को आए दिन ये उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है उसके लिए वो रेडी करते हैं। जहां तक बात आती है प्लेसमेंट की, तो बच्चा जो इन तैयारी से बिछड़ जाता है, मतलब कहें तो वो ना तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोई कोर्स करता है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ना वो स्टार्टअप के ऊपर कोई लर्निंग करता है, तो मैं समझूंगा उस बच्चे को तो कम से कम शुरुआत में एक दो साल नौकरी करनी चाहिए। नौकरी का क्या एनवायरमेंट होता है, अपने अपने कलीग्स को कैसे डील करना है, प्रेशर को कैसे डील करना है, अपने कस्टमर को कैसे डील करना है, फिर वो सब चीजें जो हमारे यूनिवर्सिटीज में उसको फ्री में मिल रही है वो प्लेसमेंट में जाके कंपनीज में वो चीज जब तक नहीं लेगा, जब तक वो एक सफल उद्यमी नहीं बन सकता, एक सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो प्लेसमेंट उन लोगों के लिए जरूरी है जो हमारे यहाँ पर ये स्किल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो स्टार्टअप तो बहुत अच्छा है।
0: सर, आप बात करना चाहेंगे आपकी लीडर फिलोसफी के बारे में।
1: देखिए, मैं सबसे पहले मैं विश्वास करता हूँ कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पीड। जो आपकी दिशा है वो महत्व रखती है, आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं वो चीज सेकेंडरी है। अगर आपने गलत दिशा चूज कर ली और उस पर स्पीड से भागे जा रहे हैं तो वो दिशा आपको गलत गोल की तरफ ले जाएगी। तो अपने आप को, बच्चों को जो मार्केट में इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि आज की डेट में एआई का ट्रेंड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मार्केट में है, और कुछ नहीं तो क्या क्या चीज मार्केट में चाहिए, बच्चे उस पर जाएं। और इंजीनियरिंग में कैसे सक्सेसफुल बना जाता है एक करियर के लिए, बच्चे को क्या क्या तैयारी करनी होती है, कम से कम वहां से सीख ले। हम तो सिखा ही रहे हैं, हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल के अंदर ये सब चीजें सिखाई जाती है, हमारे यहाँ पे स्टार्टअप सेल में ये सब चीजें सिखाई जाती है, रिसर्च का एक पूरा बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर है। उनसे अलग अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो फिर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। उस मेहनत के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको अपने अंदर इम्बाइव करनी होगी, और थ्रू आउट लाइफ ये दोनों चीजें तो आपके अंदर रहनी ही चाहिए, अगर आपको आपकी दिशा और दशा दोनों सही है तो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी कमाल की जानकारी देने के लिए। एंड अब आपसे मैसेज लेना चाहेंगे हमारे यूथ के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए।
1: देखिए, लाइफ में अगर मैं कहूंगा कि इंजीनियरिंग में भी कोई एक छोटा सा कोई शॉर्टकट से कोई आप जल्दी सक्सेस नहीं ले सकते। सक्सेस लेने के लिए आपको डिसिप्लिन होना, अपनी कोर वैल्यूज को कंसिस्टेंटली अपने अंदर मेंटेन करना, जो आपकी अच्छी वैल्यूज है उनके साथ में, और एक रेस्पेक्टफुल एनवायरमेंट में डिसिप्लिन सिंसियरिटी के साथ में अपने काम पर फोकस करना। अगर नौकरी मिलना आपका टारगेट है तो आप गलत दिशा में हैं। नौकरी लेना बहुत आसान है, पर नौकरी पर बने रहना उसके लिए आपको ताउम्र आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, आपको स्किल एनहांसमेंट करने होंगे, और वो जरूरी भी है। तो मेरा यही मैसेज आज की युवा पीढ़ी के लिए है कि अपने आप को हमेशा अग्रसर रखें, नई नई टेक्नोलॉजी सीखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। आने वाले 5 साल में एक पूरी दुनिया जो है ट्रांसफॉर्म होने जा रही है एआई की मदद से, तो क्या हमारी पीढ़ी उसके लिए तैयार है? उसके लिए तैयार होना है तो हमें अपनी सोच को, अपने कार्यस्थल को, अपने पूरे इकोसिस्टम को अपने हिसाब से अपने आप को उसके अंदर ढालना होगा। जो उस इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी अच्छी खूबियां हैं उसको हमें इम्बाइब करना होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड अभी जो श्रोता हमें इस वक्त सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप जरूर एडमिशन ले सकते हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। बाकी फिलहाल जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्रांति दिवस के अवसर पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीत आपके अपने दोस्त पंकज के साथ आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

इतिहास के पन्नों को पलटिए। 10 मई 1857 का वो दिन जब भारत ने पहली बार संगठित होकर गुलामी की बेड़ियां तोड़ने की कसम खाई थी, वो तारीख जब मेरठ में क्रांति का सैलाब आया। इतिहास गवाह है, क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। आज क्रांति दिवस के मौके पर हम उन वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में आज

0: एप्लीकेशंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
1: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे। आफ्टर 12th वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पे बात कर लेते हैं।
0: जी, देखिए आफ्टर 12th वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
1: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे 12th के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
0: देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने, जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्ह हैं।
1: सर, अभी जैसे हमने आफ्टर 12th की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है, जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या-क्या हो जाते हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो या माता पिता हो सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
1: सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं 12वीं पास करके आने वाले हों या ग्रेजुएट करके आने वाले हों, वो केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस क्यों चुने?
0: देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कुरिकुलम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा फोकस बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना है ताकि जब वो अपनी डिग्री लेकर समाज में उतरे तो वो अपने आप को साबित कर सके। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होने की वजह से, उनके पास स्किल्स होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे कॉलेज से जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं।
1: सर, अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं और इस साल 12th करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, वो कॉलेज जाना चाहें तो क्या एड्रेस है विजिट के लिए, एक बार बता
0: देखिए
1: दीजिए।
0: बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों को जो भी विजिट करना चाहें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस, साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए रिसेप्शन पे, हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
1: सर, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
0: जी जी पंकज जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारी लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं आईआईटीज, एनआईटीज और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं। वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि व्हाट इंडस्ट्री वांट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने

0: क्योंकि स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
1: सर, एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
0: देखिए, एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए। वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन हो जाता है।
1: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को। उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर ट्वेल्थ आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहाँ पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे। आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूं और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज ने मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी के गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनकी हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी, जिसके हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU। इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में। एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है। थैंक यू।
3: जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कुणाल चौधरी एंड आई एम करंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस। आई हैव टेकन माय एडमिशन इन 2024 एंड आई हैव प्रेजेंटेड माय रिसर्च एट AIU एंड आल्सो प्रेजेंटेड माय बायोमेडिकल बेस्ड स्टार्टअप एट AIU। केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस इज अ वेरी गुड कॉलेज। इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन लैब ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द फैकल्टी हेयर आर वेल एक्सपीरियंस। दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट आउट देयर। The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical based startups and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
4: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. Koi organism jo itna chota hota hai, hume nazar bhi nahi aata, wo magnify hokar kitna khubsurat lagta hai. At that moment, I decided to pursue microbiology as my career. And to accomplish this dream, I chose Subharti College. Kyunki yahan par sirf theoretical knowledge hi nahi di jati, balki practicals par bhi focus kiya jata hai. Yahan ki well-equipped laboratories, experienced faculty members ne meri bahut help kari hai. Currently, I am working on a project that is role of enzymes in food and feed industry, jo mere aage ke career se bhi related hai. यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है, जिसमें से एक था मदर डेयरी, विच इज माय ड्रीम कंपनी। आगे जाकर मैं फूड इंडस्ट्रीज में काम करना चाहती हूँ एज अ फूड एनालिस्ट, ताकि मैं फूड सेफ्टी इंश्योर कर सकूँ फॉर अ बेटर इंडिया। ओवरऑल सुभारती कॉलेज मेरे फ्यूचर प्लान्स को शेप करने में मेरी हेल्प कर रहा है एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जय हिंद, जय भारत।
5: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम जानवी है और मैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हमारे कॉलेज केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ।
6: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फॉरेंसिक साइंस में एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस।
5: हमारे यहाँ नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इक्वली मिलती है। इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं बट हम उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं।
6: जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग लैबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस। इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं, कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप। हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, ये सब हम अपनी लैबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आए और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।
7: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना, और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं। मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।
1: तो अभी आपने सभी स्टूडेंट्स को सुना, सबने अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ साझा किए, और आप भी आइए केरल उलमा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लीजिए। आप इस साल 12th कर रहे हैं तो उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जो आफ्टर 12th होंगे, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स आप यहां पर आकर कर सकते हैं। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम कोर्सेज की जानकारी आपने हमें दी। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे हम।
0: मेरा बस यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: क्रांति दिवस के अवसर पर सुनते रहिए देशभक्ति गीत सिर्फ आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

क्रांति क्या है? अन्याय के खिलाफ उठने वाली पहली आवाज। 10 मई 1857 को शहीद धन सिंह कोतवाल और उन वीर सिपाहियों ने मेरठ से यही आवाज बुलंद की थी। आज का युवा उसी जज्बे को सलाम करता है, क्योंकि देश आज भी उन्हीं के बलिदान पर खड़ा है। अपनी विरासत को जानो, अपने वीरों को पहचानो। 10 मई क्रांति दिवस के सभी वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज का ये खास पॉडकास्ट उनके लिए है जो वकालत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी खास अतिथि सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम। मैम स्वागत है आपका।
1: पंकज जी थैंक यू और धन्यवाद, आपने मुझे आज इस अवसर पर बुलाया।
0: मैम हमारे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में चल रहे कोर्सेज के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे।
1: सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी विधि के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है और उत्तर भारत में ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो BA LLB LLM LLM एग्जीक्यूटिव PG डिप्लोमा PhD और LLD प्रोग्राम को देता है।
0: मैम अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहेंगे, कोई बच्चा आकर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या एलिजिबिलिटी है?
1: अगर हम UG कोर्स की बात करें दैट इज BA LLB, उसमें 10+2 आपका होना चाहिए और 45% एग्रीगेट होता है। उसमें हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है संस्था का, तो उसके माध्यम से वो प्रवेश ले सकता है BA LLB में। इसके अलावा PG डिप्लोमा का हमारा कोर्स है। PG डिप्लोमा हम लोग ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉ, पेटेंट, IPR इन विषयों पे कराते हैं। इसमें किसी भी स्ट्रीम से जो ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो इसमें प्रवेश ले सकता है और इस विषय पर अपने जो भी आप ह्यूमन राइट्स हैं, पेटेंट हैं, उस पर आप अपना डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं।
0: मैम कितने टाइम ड्यूरेशन के सभी कोर्सेज हैं, यूजी के भी और पीजी के भी?
1: हमारा जो BA LLB का कोर्स है ये 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है। जो हमारा पीजी डिप्लोमा का कोर्स है वो 1 वर्ष का कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारे संस्थान में मास्टर्स में LLM है। LLM जो 2 ईयर्स कोर्स है वो रेगुलर कोर्स है और उसमें हम ड्यूअल स्पेशलाइजेशन देते हैं। और जो हमारे यहाँ 4 स्पेशलाइजेशन है हमारे संस्थान में, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड द कॉर्पोरेट लॉ। इन 4 स्पेशलाइजेशन में विद्यार्थी जो है अपने इंटरेस्ट से कोई भी 2 स्पेशलाइजेशन चूज कर सकता है और हम लोग ड्यूअल स्पेशलाइजेशन की डिग्री मास्टर्स में देते हैं। इसके अलावा हमारे पास मास्टर्स में LLM एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है। दोज हु आर प्रोफेशनल, जो लोग जॉब में हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा LLM एग्जीक्यूटिव का प्रोग्राम है। ये 3 वर्षीय प्रोग्राम है।
0: मैम आपने इन तमाम कोर्सेज के बारे में बताया और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कॉलरशिप पर एडमिशन खोजते हैं, तो क्या हमारे यहाँ स्कॉलरशिप पर भी बेस्ड?
1: हमारा संस्थान डिफरेंट स्कॉलरशिप देता है, मेरिटोरियस स्कॉलरशिप देता है। उसमें एक क्राइटेरिया बना है, 9200 पे आपका यूजी अगर आप करना चाहते हैं, BA LLB करना चाहते हैं, तो वहाँ पे 50% आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे ही वो सारी ट्यूशन फीस पे एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा मास्टर्स में भी यही व्यवस्था है और उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप 9200% का एक पूरा बॉक्सेस बने हुए 9200 और 80.9%, तो वहाँ पर बच्चों को सुविधा स्कॉलरशिप की अवेलेबल है। इन स्कॉलरशिप के अलावा भी हमारे यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा जो एलुमिनाई है उनके लिए स्कॉलरशिप है, आर्मी पर्सोनल्स के लिए स्कॉलरशिप है, साथ ही साथ जो मार्टियर्स हैं उनके डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी हमारी संस्था जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है।
0: मैम यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करें तो किस तरह का स्टूडेंट को यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है?
1: पंकज जी मैं आपको बताऊं कि हमारी जो संस्था है, हमारा जो सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, वो केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है और हम लोग जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं। और हमारा संस्थान कंटिन्यूस बच्चों को जो एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करते हुए उनको मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन कराता है, उनको क्लाइंट काउंसलिंग सिखाता है, जजमेंट राइटिंग कराता है, कोर्ट विजिट, जेल विजिट, लोक अदालत विजिट, ये सब कराता है। इसके साथ ही साथ हमारे संस्था में जो एजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, एक हमारा फ्री लीगल एड क्लिनिक है जहां पर बच्चे जो है क्लिनिकल सारे एस्पेक्ट सीखते हैं और फ्री लीगल एजुकेशन, वहां फ्री लीगल एड उनको प्रोवाइड कराई जाती है। दोज हु आर रिक्वायर्ड द फ्री लीगल एड, जिनको विधिक सहायता की आवश्यकता होती है, वो हमारे यहाँ आकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करते हैं और ये 24/7 हमारे यहाँ चलता है संस्थान में। तो हमारे जो बच्चे हैं वो क्लासरूम तक सीमित नहीं है, वो फील्ड में जाके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख सकते हैं, जिससे कि वो रियल वर्ल्ड में एंटर करने से पहले, प्रोफेशनलिज्म में एंटर करने से पहले वो सारी विधा सीख जाते हैं कि उन्हें किस तरह से आगे डील करना होगा।
0: मैम करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, जो भी कोर्सेज आपने बताया यूजी के हैं या पीजी के हैं, तो आगे करियर में वो क्या क्या कर सकते हैं?
1: पंकज जी विधि के क्षेत्र में जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। आप BA LLB का कोर्स करने के बाद आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, आप डिफरेंट लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी लॉ फर्म बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो आप जुडिशरी के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं, बैंक के क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल विधि के क्षेत्र जो ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट में विधिक जो एक्सपर्ट्स हैं, लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर BLLB के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप है और आप कुछ भी, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है आजकल, फैशन लॉ, एंटरटेनमेंट लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके पास बहुत सारा स्कोप है। साथ ही साथ अगर हम मास्टर्स की बात करें तो बच्चा BLLB करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद जब मास्टर्स करता है, LLM करता है, तो LLM करने के बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो एकेडमिक्स में जा सकता है, वो UGC NAT क्लियर कर सकता है, PhD कर सकता है, रिसर्च कुछ ऑप्ट कर सकता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो LLM फर्स्ट ईयर करने के बाद, मास्टर्स का पहला साल करने के बाद ही UGC NAT क्लियर कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा संकेत है हम लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर इन लेटर और स्पिट हम फॉलो करते हैं कि 75% अटेंडेंस है तो वो उसको बच्चा करता है और उसका रिजल्ट हमें मिलता है, उसका आउटकम हमें मिलता है।
0: मैं, वैसे तो हम लगभग सभी बातें इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी जिन भी बच्चों तक ये हमारा पॉडकास्ट पहुंच रहा है और आगे जुडिशरी के क्षेत्र में या आगे वकालत के क्षेत्र में अपना करियर जो बच्चे देखते हैं इस वक्त, हमें सुन रहे हैं, उनके पास अगर थोड़ी सी क्वेरी अभी बच जाती है तो क्या रास्ता है, किस तरीके से वो कॉलेज जा सकते हैं, एड्रेस क्या है?
1: हमारा जो प्रमुख संस्थान है ये NH 58 पर स्टैब्लिश है, आप कभी भी आकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आकर हमसे क्वेरी कर सकते हैं।
0: तो अभी अभी आपने सुना सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम को, और उम्मीद है तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। एंड अब आपको ये चुनना है कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको आगे क्या करना है, अगर आप लॉ के क्षेत्र में आना चाहते हैं और PG आपको करना है तो आपको क्या करना है वो आप समझ सकते हैं। बाकी अभी हम सुनने जा रहे हैं उन बच्चों को जो सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हें।
2: जय हिंद, मेरा नाम सृष्टि सिरोही है और मैं BLLB थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज आपके साथ सुभारती से जुड़े अनुभव साझा करूंगी। जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था तो लगा 12th के बाद क्लास टीचर ने जो सपोर्ट किया, ऐसा सपोर्ट कहाँ ही मिलेगा किसी कॉलेज में, पर यहाँ का मेंटर मेंटी सिस्टम एक स्ट्रेंथ बना और साथ ही ऐसी गाइडेंस दी कि जो आज तक इतना सपोर्ट करती है कि जब भी कोई जरूरत पड़े तो सिर्फ उनसे संपर्क साध लिया जाए तो वे हर मुश्किल हल कर देते हैं। दूसरा, यहाँ की लाइब्रेरी जो हर प्रकार के सब्सक्रिप्शन और साथ ही जर्नल्स और न्यूज़पेपर और छोटी से बड़ी बुक्स हमें प्रोवाइड करती हैं। सुभारती के अगर ब्लॉक्स में घूमो या कैंपस को विजिट करो तो देखोगे कर्नल लक्ष्मी सहगल से लेकर झलकारी देवी, जिनके नाम इतिहास में छुपे रह गए, जो सुभारती यूनिवर्सिटी ने अपने आंगन में उन्हें जगा दी और साथ ही उनका नाम अमर कर दिया। सुभारती यूनिवर्सिटी के 4 क्लब, कल्चरल, लिटरेरी, इनोवेशन और स्पोर्ट्स क्लब, बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके इंटरेस्ट से जुड़ी चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए। और साथ ही सबसे अच्छा, सुभारती के टीचर्स जो हमें हमारे फ्रेंड्स और साथ ही गुरु दोनों प्रतीत होते हैं। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी, सुभारती सिर्फ करियर ही नहीं बनाता, यह एक चरित्र का निर्माण करता है। धन्यवाद।
3: जय हिंद, मैं ओम ठाकुर, विधि संकाय के चतुर्थ वर्ष का छात्र। जब सुभारती के अंदर मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ तो मुझे अपने 5 साल के जर्नी का वो पहला साल याद आता है। घर से इतनी दूर, मन में हजारों शंकाएं, परंतु यहाँ के माहौल ने उन सभी शंकाओं को क्षण भर में दूर कर दिया। बात अगर एकेडमिक्स की करूँ तो मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, अंग्रेजी में हाथ जरा तंग थी। न केवल मैं, मेरे घर वाले भी परेशान थे कि आखिर कैसे मैं इन चीजों को मैनेज कर पाऊंगा। मगर कॉलेज और टीचर्स का जो सपोर्ट मुझे और मेरे जैसे अन्य बच्चों को मिला, मैं आज ये कह सकता हूँ कि अब लैंग्वेज हमारे एकेडमिक्स में बैरियर नहीं रहा। साथ ही मूड कोट एक्सरसाइज, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस समय समय पर होते रहते हैं, जिनकी मदद से हम लॉ को न केवल किताबों में बल्कि उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझते हैं। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करूं तो यूथ पार्लियामेंट्स, डिबेट्स और अन्य कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से सुभारती अवसरों का भंडार है। और यही कारण है कि मेरे जैसा एक छात्र जिसने 12वीं तक कभी माइक भी नहीं पकड़ी थी, वह आज राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में न केवल प्रतिभाग कर रहा है बल्कि मैंने कई प्रतियोगिताएं जीती भी है। और मेरे जैसे हजारों छात्र हैं जो अलग अलग मंचों पर देश और सुभारती का नाम रोशन कर रहे हैं। कहते हैं, अ जर्नी विच वेल बिगन इज ऑलमोस्ट हाफ डन। जिस दिन मैंने सुभारती को चुना, विधि क्षेत्र की इस जर्नी का वह शुरुआत था जिसने मेरे सफर को आधा तय कर दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता का मूल मंत्र जो मैं आज यहाँ से लेकर जाऊंगा, वो बचे खुचे मुसीबतों से भी मुझे विजय प्राप्त करवाएगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा, प्राउड टू बी सुभारतीयन।
0: तो अभी अभी आपने उन छात्रों को सुना जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। बाकी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। चलते चलते एक मैसेज हम जरूर आपसे लेना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जिन तक हमारा ये पॉडकास्ट पहुंच रहा है।
1: मैं अब एक केवल यही वाक्य कहना चाहूंगी बच्चों से कि आप अपने करियर पे फोकस करें, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे अपने जो भी आपने क्षेत्र चुना है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप अपना टारगेट सेट करें एंड हिट द टारगेट, तभी आप जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और शिक्षा का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ये बात आपने माइंड में बिठा लीजिए कि शिक्षा का उद्देश्य आपको सेवाएं देना है। सेवाएं किसको देना है? राष्ट्र को देना है। बिकॉज हम किस पर बिलीव करते हैं? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। विद दिस वर्ड, जय हिंद जय भारत।
0: बिल्कुल बात सही है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एंड उम्मीद है आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही मिलेंगे किसी नए अतिथि के साथ, तब तक मैं भी कुछ बातें आपसे कहकर जाता हूँ हमेशा की तरह, कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से, प्लीज हेलमेट लगाया कीजिए, और फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही जुड़े रहिए आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के साथ। जय हिंद जय भारत।

क्रांति दिवस के अवसर पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीत आपके अपने दोस्त पंकज के साथ आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

क्रांति सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जज्बा है। अन्याय के खिलाफ उठने वाली वो पहली आवाज है। हम याद करते हैं शहीद धन सिंह कोतवाल और उन वीर जाबाज सिपाहियों को जिन्होंने अपनी वीरता दिखाते हुए मेरठ की धरती से एक चिंगारी उठाई जिसने पूरे देश में आजादी की मशाल जला दी। आज क्रांति दिवस के मौके पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जय हिंद वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तुराज कृष्णा और हमेशा की तरह एक और खूबसूरत प्यारा धमाकेदार कार्यक्रम लेकर हाजिर हो चुका हूँ। और अकेला नहीं हूँ मैं, मेरे साथ इस महफिल को और भी खूबसूरत और गानों के रंग में रंगने के लिए और पुराने जमाने की बातें लेकर हाजिर हो चुके हैं आदरणीय आरपी सिंह सर भी।
1: जय हिंद कृष्णा। आजाद हिंद रेडियो पे आप सबका कृष्णा ने स्वागत कर लिया है, मैं अपनी तरफ से और भी स्वागत करता हूँ। तो मौसम बहुत ही खुशगवार होने वाला है
0: जी।
1: इसको कहते हैं कि अब नए फूल खिलेंगे, जाड़े का मौसम खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और हो सकता है कि ये सीरीज पूरी खत्म होते होते पूरी गर्मी पड़ने लगे।
0: जी जी,
1: आप इससे चौंकिए नहीं, ये पूरी सीरीज है। और आज हम किसी एक फिल्म की, किसी एक हम किसी और किसकी की नहीं बात बता रहे, आज हम एक ऐसे कलाकार को आपके सामने लेके आ रहे जिसने क्या नहीं किया
0: जी।
1: उसने फिल्म बनाई, उसने गाने गाए, उसने कॉमेडी करी
0: जी।
1: उसने कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं करी? रूठा तो मनाने वाले बहुत थे, और जब मनाने पे लगा तो सभी थे
0: जी।
1: तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के। अपने खंडवा से उनको बहुत प्यार था
0: जी,
1: और वो अक्सर फिल्मों में खंडवा का नाम लेते थे। हो सकता है जब हम लोग जवान थे तो हम लोग सोचते थे ये खंडवा के बारे में ही क्यों बार बार बात करता रहता है
0: जी।
1: लेकिन खंडवा उनका अपना जन्म स्थान था, और वो बहुत रेयर लोगों में से थे जिन्होंने अपने जन्म स्थान को नहीं भूला और लगातार उसके लिए काम करते रहे। उसके लिए हमेशा वो, अगर खंडवा से उनके पास कोई बुलावा आ जाता था तो सब प्रोग्राम छोड़ के भाग जाते थे
0: जी।
2: मैंने आपको कहीं देखा है? आप कहीं खंडवा, खंडवा गजक दाम के सामने
3: और लाइब्रेरी के पास,
2: जगदीश
3: प्रीतम
2: खूब मिले भाई, खूब मिले, खूब मिले।
1: ऐसे थे हमारे आभास कुमार गांगुली यानी किशोर कुमार।
0: क्या बात है
4: ना।

0: मेरा नाम कालू कंबाल खंडवे वाला जाति किशोर कुमार आया था।
1: और मैं हूँ किशोर खंडवे वाला, दिल वाला, मत वाला।
2: आपका नाम किशोर कुमार है ना?
1: जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? वैसे मेरा नाम किशोर है, मगर ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं हर फन का उस्ताद हूँ। दरअसल उनका नाम है किशोरानंद, जो शायद आपको भी नहीं पता।
3: किशोर कुमार
2: है?
3: डबल डबल है।
1: हमारा नाम किशोर कुमार गांगुली खानवासी भी। हमारा नाम किशोर कुमार।

0: अरे मैं जो यहाँ अरे मैं जो यहाँ आया हूँ ये आप सबका उपकार है, प्यार है, दुलार है, अरे सत्कार है।
1: और
2: फिर से
0: क्या आप कुछ कहिए ना, मैंने तो कह दिया। अरे हाँ तो मैं जो यहाँ आया हूँ ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है, और साथ साथ दूरदर्शन टीवी का उपकार है।
1: बहुत ही बड़ा चमत्कार है, लेकिन सब सुनने वालों को गाने का भी इंतजार है।
0: तो फिर किशोर कुमार तैयार है। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, मूड बड़ा अच्छा है।
1: अच्छा,
0: समा सुहाना, मौसम मस्ताना, ऐसे में कोई मूडी गीत हो जाए।
1: मूडी?
0: हाँ मूडी,
1: वेरी गुड, वेरी गुड।
0: समझ गए।
3: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है बताइएगा जरूर। फिलहाल ये खूबसूरत नगमा,
1: ये नगमा कृष्णा, मैं इसलिए भी तुम्हें बीच में रोका
0: जी,
1: क्योंकि ये नगमा कोई मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा लिखा हुआ था या बहुत ज्यादा जिसको कहो कि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की गई थी
0: जी।
1: ये किशोर कुमार का एक अपना सपना था
0: जी,
1: और ये सपना उनके जो स्कूल था इंदौर में, वो पढ़े थे
0: अच्छा,
1: इंदौर में क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे,
0: रियल लाइफ में भी
1: चुलबुले थे
0: जी।
1: तो वो क्या करते थे कि सब लोग उधार पे खाना खाते थे कैंटीन में
0: जी,
1: और जब उधार पे खाना खाने के बाद उस समय तो 10-20 पैसे भी बहुत बड़े चीज होती थी
0: जी।
1: तो जब वो पैसा मांगने आए तो वो एक गाना सुनाते थे
0: जी।
1: अब वो गाना इतना फेमस हुआ जब वो रियल फिल्मों में आए तो उन्होंने वही गाना फिल्मों में गाया। वो उनका सपना था कि मैं फिल्म में भी ये गाना गाऊंगा
0: जी,
1: ₹5 12 आना मारेगा भैया ना ना ना
2: ₹5 12 आना।
0: दोस्तों आप भी उधार मांगने के लिए इस गाने का इस्तेमाल कर सकते हैं।

0: बहुत ही खूबसूरत तराना भी आपने सुना सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तुराज कृष्णा, मेरे साथ स्टूडियो में आदरणीय आरपी सिंह सर भी हैं और आज हम बात कर रहे हैं किशोर दा के बारे में, जिनके गाने, फिल्में, उनकी एक्टिंग, उनकी हर कलाकारी, हर अदाकारी सबको आज भी लुभाती है, आज भी पसंद है।
1: देखो, अगर उस समय की फिल्म में सुना जाए तो ये 5 रुपया 12 आना तो लोग आज भी, जब हम लोग पढ़ते थे
0: जी
1: कैंटीन में
0: जी,
1: तो कैंटीन वाले को चढ़ाने के लिए हम

0: लेकिन ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ और आज भी अगर एक बार नई जनरेशन सुन लेती है तो थोड़ा सा उसका अट्रैक्शन तो आता ही आता है
1: जी,
0: वो चाहे कुछ कह ले। लेकिन ये फिल्म थी उनकी प्रारंभिक दौर की, चलती का नाम गाड़ी
1: जी।
0: जैसा कि सबको पता है कि किशोर कुमार तीन भाई थे
1: जी,
0: और अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार
1: जी,
0: और ये तीनों भाई ने इस फिल्म में काम किया था चलती का नाम गाड़ी में।
1: चलती का नाम गाड़ी जी,
0: और इसमें आगे हम बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ही तगड़ा सीक्वेंस था कि अशोक कुमार को लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी।
1: अच्छा,
0: वो उनके गैराज, वो काम का वो मतलब मोटर गैराज थी, अगर कोई लड़की आ भी जाए तो उसको वो भगा देते थे।
1: अच्छा,
0: लेकिन किशोर कुमार दूसरे ही तरह के थे।
1: हाँ।
0: अनूप कुमार तो खैर और भी थे।
1: हाँ।
0: तो इन लोगों ने गाना इनका इतना फेमस हुआ, एक लड़की भीगी भागी सी,
1: सोती रातों में
0: जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो क्या बात है।
2: मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे।
1: आइए दोस्तों, यही खूबसूरत तराना सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

0: अभी आपने सुना एक लड़की भीगी भागी सी, किशोर दा ने क्या खूबसूरत तरीके से गाया है। आज भी इसको सर अगर कोई एक बार सुन लेता है तो गुनगुनाता जरूर है सर इसको।
1: बात तुम्हारी

0: बिल्कुल सही है, ये उस समय के गाने ऐसे होते ही थे। और हम तो कहते हैं कि किशोर कुमार का भाग्य और उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना लुभावना था कि एक बार जो उनके करीब आ गया
1: जी,
0: लड़की आई तो उसने शादी कर ली चार चार शादियां इनकी हुई थी
1: जी।
0: लेकिन एक और भी था कि अपने बड़े भाई से इतना डरने के बाद भी ये समझते नहीं थे। और एक और गाना जिसमें कि शायद उस समय वो टेक्नोलॉजी लगाने के लिए फिल्म में बहुत जद्दोजहद हुई होगी, वो ये थी कि उड़ती हुई गाड़ी दिखाना,
2: बाजू
1: उड़ती हुई गाड़ी दिखाना जी,
0: कि गाड़ी उड़ रही है वहाँ पे ये गाना सुना रहे हैं, बाबू समझो सारे हॉर्न पुकारे,
1: बम बम बम बम,
0: तो ये गाना भी सुन ले।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू
1: ए बाबू।

0: सुपर गानों की बरसात है ये
1: बाबू समझो इशारे।
0: यह मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तुराज कृष्णा और मेरे साथ स्टूडियो में आदरणीय आरपी सिंह सर हैं और आज पिटारा खोल कर बैठे हैं सर। किशोर दा के गानों की पूरी पोटली है, एक से बढ़कर एक तराने। सर वैसे आगे हम बात करेंगे, लेकिन आपका कौन सा फेवरेट गाना रहा उस जमाने में सर, किशोर दा का?
2: किशोर दा का मेरा फेवरेट गाना तो एक बहुत तगड़ा था, कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा।
3: कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा।
2: जी हम किसी के न रहे कोई
0: हमारा न रहा।
3: किसी के न रहे कोई हमारा।
2: ये अलग बात है कि तुम उसको कहीं और जोड़ लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था।
0: जी सर
2: हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन हाँ हम लोग ये नहीं था कि हम लोग एंजॉयमेंट नहीं करते थे। रेडियो सुनते थे, ट्रांजिस्टर सुनते थे
0: जी,
2: फिल्में कम देख पाते थे, लेकिन हाँ हम लोग करते थे। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म आई 1961 में, झुमरू।
0: झुमरू
4: मैं हूँ झुमझुम झुमझुम झुमरू पकड़ घूमू बनके घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला।
2: नाम भी ऐसा कि लोग झूम जाएं और गाने और उसका करेक्टर भी ऐसा कि लोग झूम जाएं। किशोर कुमार ने उसमें कौन सा करेक्टर नहीं दिया
0: जी,
2: वो नेपाली में भी गा रहे हैं, वो अलग अलग तरह के गाने गा रहे हैं, लेकिन झुमरू का जो कि उसकी टाइटल सॉन्ग था मैं हूँ झुमझुम झुमझुम झुमरू, ये
0: मैं प्यार का गीत सुनाता चला।
2: तो ये प्यार का गीत सुनते हुए हम लोग आगे चले।
4: मैं हूँ झुमझुम

झुमरू के साथ आप झूमे ही, मैं हूँ वास्तुराज कृष्णा और मेरे साथ स्टूडियो में आदरणीय आरपी सिंह सर हैं। और आज हम, जैसे कि गानों से आपको पता चल गया, अगर अभी आपने रेडियो चलाया है तो आज यहाँ पर बातें हो रही है किशोर दा

0: के बारे में। झुमरू में एक गाना और था जिसमें कि वो जो मधुबाला है, खैर उस समय इन लोगों का काफी अट्रैक्शन भी चल रहा था
1: जी,
0: तो मधुबाला जो है वो खड़ी हैं और ये गाना गा रहे हैं, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी वो मेरे दिल सुना कोई, बहुत फेमस गाना, बहुत ही बढ़िया गाना।
1: तो आइए दोस्तों किशोरदा की शुरुआती मोहब्बत का।

सुनते रहिए सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, वास्तुराज कृष्णा के साथ। जय हिंद।

0: जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ वास्तुराज कृष्णा और मेरे साथ आदरणीय आरपी सिंह सर भी बैठे हैं और आज हम बात कर रहे हैं किशोरदा के बारे में और उनके सुपरहिट एक से बढ़कर एक तराने गाने आपको भी जरूर पसंद होंगे। और सर, आजकल के जो नए जमाने के गाने होते हैं, एक दिन दो दिन तो हिट सुपर हिट ट्रेंडिंग में रहते हैं, लेकिन दो तीन दिन के बाद वो पुराने हो जाते हैं। लेकिन किशोरदा के इतने साल के पुराने गाने आज भी हम सबको इतने पसंद क्यों हैं?
1: अब आप एक चीज ये देख लो, 1961 का ये गाना है
0: जी,
1: जो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ या जो अभी आपने सुने वो उससे पहले ही के थे
0: जी सर।
1: लेकिन आज भी ये गाने हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है, वो जो हमारे जो टॉप 20 टॉप 30 उसमें आते हैं ना आए
0: जी,
1: लेकिन अगर कोई सीरीज ये बनाए कि ओल्ड टॉप 20 या ओल्ड टॉप 30
0: जी,
1: तो उसमें मेरे समझ में ये सारे गाने में उनको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा गाना मैं छोड़ दूं
0: जी,
1: जो कि आज हम लोगों की स्थिति हुई है कि हम इसकी सीरीज बना रहे हैं
0: जी।
1: लेकिन चलो, ये बातें इतनी लंबी हैं कि किशोर कुमार की पूरी हिस्ट्री सुनते सुनते तो शाम हो जाएगी
0: जी।
1: लेकिन अब यहाँ पे हम एक चीज और देखें कि आज के जो हीरो हीरोइन हैं
0: जी,

0: वो कभी भी खच्चर या गधे के साथ चलना पसंद नहीं करेंगे।
1: नहीं सर, उन सबको बड़ी महंगी गाड़ी चाहिए।
0: लोग लिमोजिन पे चलते हैं, लोग पोर्स पे चलते हैं, या अगर करना है तो खूब बढ़िया सा घोड़ा चाहिए, सफेद रंग का या
1: काले रंग का,
0: काले रंग का, जिसको कि वो कहे ये तो अरबी घोड़ा है
1: जी।
0: लेकिन ये जो हम गाना बता रहे हैं
1: जी,
0: ये थोड़ा सा मतलब किशोर कुमार सैड मूड में गा रहे हैं
1: जी।
0: वो है, कोई हमदम ना रहा कोई सहारा ना रहा, हम किसी के ना रहे कोई
1: हमारा ना रहा।
0: और वो साथ में चलते चले जा रहे हैं, वो पहाड़ के किनारे किनारे, मतलब आसमान भी दिख रहा है
1: जी,
0: और वो ये गाना गाते हुए जा रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इसमें भी बीच में वो अपनी जो जो सांस खींच के वो जो गाते थे वो है
1: जी।
0: आप ये गाना सुनिए फिर देखिए कि वो चीज है कि नहीं।
1: आइए दोस्तों, आपके लिए यही तरह ना।

0: जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुपर हिट तरानों के इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं किशोर दा के बारे में। उनकी जिंदगी इतनी बड़ी है और वो इतने बड़े कलाकार थे कि उसको किसी एक प्रोग्राम में समेटा नहीं जा सकता। उनके हर गाने ऐसे हैं कि हर गाना पहले से ज्यादा अच्छा लगता है सर, कि ये भी अच्छा था, ये उससे भी अच्छा है। तो इसलिए हम कोई गाना नहीं चाहते कि छूट जाए, पर आपको भी अगर कोई गाना पसंद है तो वो बताइएगा जरूर।
1: एक साल बाद ही
0: जी
1: उनकी और भी कई फिल्में आई
0: जी,
1: जो कि सब सुपरहिट हुई
0: जी
1: 1962। और अगर 1962 में एक गाना जो था वो सब यंग को बहुत पसंद था
0: जी,
1: जिनकी शादी नहीं हुई थी या जिनकी हो भी गई थी वो भी पछता के कभी गाते थे, जरूरत है जरूरत है जरूरत है।
0: एक श्रीमती

0: बहाने भी बहुत से।
1: ये गाना अगर हम सुना दो तो आज वाले भी शायद बाहर निकल के गाएं,
0: हाँ
1: की जरूरत है जरूरत है।
0: और अगर घर में कोई शादी के योग्य हो तो वो इस गाने के माध्यम से अपने माँ बाप को बताए।
2: जरूरत है जरूरत है सख्त जरूरत है।
0: एक जरूरत है श्रीमती कलावती की,
1: कलावती की सेवा करे जो पति
0: की।
1: ये अलग बात है कि वो बेचारे का ये वाला सपना पूरा होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता
0: सर। वैसे वो तो ठीक है, पर आज का जमाना बदल गया, अब जरूरी नहीं कि शादी के बाद वाइफ सेवा ही करे।
1: वही तो मैंने कहा कि ये पूरा होता है कि नहीं होता है ये पता नहीं, लेकिन हाँ जरूरत है जरूरत है ये पता होगा
0: जी। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गाना सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो पर।
2: जरूरत है सख्त जरूरत है।

दोस्तों, अगर आपको भी जरूरत है किसी श्रीमती या कलावती की, उसके पहले अपनी नौकरी लगवा लेना, क्योंकि वो आते ही खर्चा तो मांगेगी। आप सुन रहे हैं भारतीय आजाद हिंद रेडियो, मैं हूं वास्तु राज कृष्णा। स्टूडियो में मेरे साथ आदरणीय आरपी सिंह सर हैं और आज हम

0: बहुत फेमस हुआ, बहुत ही फेमस हुआ, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं
1: एक ऐसे
0: गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले।
1: वाकई बहुत
0: खूबसूरत गाना था, इसको सुना लें फिर हम आगे बढ़ते हैं।

मैं हूँ वास्तु राज कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM और यहाँ पर किशोर दा के तराने आप सुन रहे हैं। अगर अभी आपने रेडियो चलाया है तो मैं आपको बता दूं कि आज के कार्यक्रम में आदरणीय आरपीसी सर भी हमारे साथ हैं और हम किशोर दा की ही बात कर रहे हैं और उनके हर गीत को देखें तो वो बहुत ही सुपरहिट और दिल को आज भी छूता है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले भी आपने ऐसा ही गाना सुना और उनकी हर फिल्म में ऐसे एक से ज्यादा गाने होते थे कि हर

0: पहले से ज्यादा अच्छा लगता है।
1: नहीं वो तो बात है, बिल्कुल सही है। इसी समय इसी पीरियड में अगर देखा जाए, किशोर कुमार की शादी
0: जी
1: जो है वो मतलब मधुबाला से करीब करीब संबंध में आ गए थे, शादी में आ गए थे
0: जी।
1: लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म की जो कि हमारे समझ में बहुत ही टफ थी
0: जी,
1: वो थी हाफ टिकट।
0: हाफ टिकट
1: जिसमें कि ये एक बिल्कुल बच्चे की तरह अपना रोल प्ले करते हैं, उसी तरह से तुतला के बोलते हैं, उसी तरह
0: अच्छा।
1: से तुतला के रहते हैं। और वो एक फिल्म के एक मतलब ट्रेन के डिब्बे में भी इसकी शूटिंग हुई
0: जी
1: तो बहुत ही मतलब अगर देखें तो आज के उसमें तो कोई नहीं क्या काम करेगा, हो सकता है महमूद कर लेते, हो सकता है कोई और कर लेते, मुकरी कर लेते, लेकिन आज तो कोई ऐसा कॉमेडियन भी नहीं नजर आता
0: जी।
1: लेकिन हाँ हो सकता है भाई, छुपी प्रतिभा तो हमेशा रहती है, कोई भी कर सकता है
0: जी।
1: तो हाफ टिकट के दो तीन गाने बहुत फेमस हुए। मैं एक गाना मैं कहता हूँ, आंखों में तुम दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी जानो या ना जानो
0: जी,
1: ये एक है गाना, ये देख लो
0: जी। ये गाना हम सुनाते हैं अपने दोस्तों को, तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर।

0: बातों की भेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल, थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सूट थोड़ा तेल। अरे बोल
1: अले वाले बेटा,
2: झूम झूम कौवा की ढोलक बजाए।
3: अरे मामा वाह।

मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल। कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल।

0: जय हिंद, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, अगर बात की जाए पुराने जमाने के हीरो के लिए, किशोर दा का एक रूल भी था कि वो सिर्फ फिल्म के हीरो के लिए गाते थे। जैसे शोले फिल्म में फिल्म के जो हीरो हैं वो धर्मपा जी थे, तो अमिताभ बच्चन जी की जो वर्जन है वो किसी और ने गाया था। तो ऐसे ही देवरन साहब की आवाज कहे जाते थे किशोरदा, और बहुत ही फेमस फिल्म है गाइड, उसके बारे में कुछ बताएं सर।
1: देखो, गाइड फिल्म साइड बाय साइड चल रही थी, लेकिन इसी समय उनकी जो वाइफ थी मधुबाला, उनकी तबीयत भी बहुत खराब चल रही थी
0: जी।
1: और शादी के बाद अगर देखें तो किशोर कुमार ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि वो बच जाएं, फॉरेन में ले जा करके उनका इलाज कराया, सब कराया, लेकिन यहाँ बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें हम लोगों को मिलती हैं
0: जी।
1: कुछ लोग कहते हैं कि किशोर कुमार ने मधुबाला का ध्यान नहीं दिया, कुछ लोग कहते हैं कि किशोर कुमार ने मधुबाला का पूरा ध्यान दिया, लेकिन हमें इन पचड़ों में नहीं पड़ना है
0: जी।
1: हम लोग अगर देखा जाए तो किशोर कुमार अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे थे, एक लंबा गैप भी आया था उसी बीमारी के चक्कर में, लेकिन उस गैप के बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसने किशोर कुमार को फिर टॉप पे पहुंचा दिया
0: जी,
1: और वो थी देवानंद की गाइड।
0: गाइड,
1: और गाइड में जो उन्होंने गाना गाया वो आज भी अगर कोई कहे कि हिट्स ऑफ देवानंद, तो सबसे पहले वो गाना याद आता है, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल।

0: जय हिंद, मैं हूँ वास्तुराज कृष्णा। मेरे साथ स्टूडियो में आदरणीय आरपी सिंह सर भी बैठे हैं। अब अपनी गाड़ी में आप अगर सुन रहे हैं तो आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अगर थोड़ी देर पहले से सुन रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आज हम किशोरदा के गीत आपको सुना रहे हैं। उनकी जिंदगी के बारे में सर हमको बता रहे हैं।
1: किशोरदा के साथ अगर देखें तो 1969 में मधुबाला की डेथ हुई थी, और ये जो हम अब बात कर रहे हैं ये 1965 के आसपास की बात कर रहे हैं
0: जी।
1: उस समय एक फिल्म आई थी देवानंद की, जो तो आपने बोला
0: जी
1: कि देवानंद उनके उनकी आवाज
0: कहे जाते थे जी सर।
1: तो देवानंद की एक और फिल्म आई 1965 में, तीन देवियां। उसमें तीन देवियां थी
0: जी,
1: और वो तीनों देवियां जो थी वो कहीं ना कहीं देवानंद के साथ आना चाहते थे
0: जी।
1: उस समय एक गाना बहुत ही फेमस हुआ, वैसे तो तीन देवियां के सब गाने बहुत फेमस थे
0: जी,
1: लेकिन किशोरदा का एक गाना बहुत ही फेमस हुआ, वो ये था कि ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ।
0: आज भी सुपर हिट है सर।
2: ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत,
1: ये भी बहुत ही सुपर हिट गाना है। ये गाना सुना जाए फिर हम लोग आगे चलें।
0: आइए दोस्तों, आपके लिए चलाता हूँ यही सुपर डुपर हिट गीत।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: हाजरीन महफिल, मेरा साथ दीजिए। अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: ठहरिए देवता, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक जाम हो जाए।
1: हो जाए। जी मैं शराब नहीं छूता।
3: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
2: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं। पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है, वरना दुख होगा इसे।

0: तरानी चलाते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए, यह है मेरठ का नंबर वन सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है जरूर बताइए। आदरणीय आरपी सिंह सर आज हमको बता रहे हैं किशोर दा की जिंदगी के बारे में और उनकी सुपरहिट फिल्मों, उनके गीतों के बारे में।
1: कृष्णा, इसके बाद एक फिल्म और आई, वो भी देवानंद की ही थी
0: जी,
1: ज्वेल थीफ, और बहुत ही हिट फिल्म थी
0: जी।
1: और उसमें भी देवानंद के लिए इन्होंने एक गाना गाया था, ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा,
2: ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा।
1: ये गाना बहुत ही फेमस और बहुत ही बढ़िया गाना था
0: जी।
1: इस गाने में भी बिना का गीत माला उस समय चलता था
0: जी,
1: इसके सारे रिकॉर्ड थे
0: जी।
1: तो अब ये गाना हम लोग सुन के फिर आगे बढ़ते
0: हैं। आइए दोस्तों, सुनाते हैं आपको ऐसा तराना। अगर आप पुराने जमाने के गाने पसंद करते हैं या आप खुद थोड़े पुराने जमाने के हैं, तो आपको पता ही होगा देवानंद साहब इस गाने में अपने कंधे पर एक डंडा और उसमें कुछ तो लटका कर रखे, बताइए क्या।
1: अच्छा, मैं बताने वाला था लेकिन चलो
0: हम इस गाने के बाद बताएंगे।
2: रोज़ रोज़।

0: तो दोस्तों ये गाना सुना आपने और गाना सुनते सुनते आपको याद आ गया होगा कि देवानंद साहब अपने कंधे पर एक डंडा रखे हैं और उसमें कुछ लटकाए। सर मैं चाहता हूँ आप बताएं सर।
1: फिशिंग रॉड लेके चले थे
0: जी
1: और ये हीरोइन जो थी वो गाड़ी में बैठी हुई थी और ये आगे आगे चल रहे थे
0: जी,
1: मतलब जिसको कहो कि वो एक जिगजैग रोड थी उस पे ये आगे आगे चल रहे थे
0: जी।
1: तो बहुत ही फेमस गाना था और उसके बाद बहुत से लोग हो सकता है ट्राई भी किए हो, क्योंकि दिल्ली दिल्ली उल्ली में तो नहीं, लेकिन जहाँ समुद्र किनारे

0: कदम आपका। यह है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजादी रेडियो। एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं और आदरणीय आरपी सिंह सर बैठे हैं। और जब बात किशोरदा के गानों की हो, उनके जिंदगी की हो, तो पड़ोसन फिल्म का जिक्र भला कैसे नहीं होगा। अब आपकी पड़ोसन का जिक्र मैं नहीं कर सकता, पर पड़ोसन फिल्म का जिक्र सर जरूर करेंगे।
1: लेकिन एक बात कृष्णा है सर, कि आज ये चीज तुम जो कह रहे हो सकता है तुम ना जिक्र कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनकी पड़ोसनों का जिक्र उनको अच्छा लगेगा
0: जी।
1: तो वो एक था, लेकिन आजकल के शायद ऐसे अब मकान नहीं होंगे जिसमें कि एक सामने वाली खिड़की दूसरे की सामने हाँ। वाली खिड़की के सामने ही खुलती है।
0: ऐसे तो कम ही रहते
1: ऐसे कम ही रहते हैं। तो एक गाना था, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। लेकिन वो गाना जो था वो उतना तो गाना भी बहुत फेमस है
0: जी,
1: लेकिन उसकी सीन जो थी वो अगर तुम सोचो तो तुमको हंसी आएगी
0: जी,
1: कि सुनील दत्त सहारा बानो को बहुत चाहते थे
0: जी।
1: लेकिन सुनील दत्त जो थे वो एक तरह से मतलब बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, और जिसको कहो कि गांव के जैसे लगते थे, और सहारा बानो बिल्कुल टिप टॉप एक बढ़िया लड़की थी
0: जी।
1: तो उनका जो है मन उनको बात करने का होता था, ये सब होता था
0: जी।
1: तो इन लोगों ने एक प्लान किया, किशोर कुमार खुद उस फिल्म में थे और जितने उस समय के कॉमेडियन हुआ करते थे वो सब उसके साथ थे। किशोर कुमार का अगर तुम उस समय का मुंह देखो
0: जी,
1: तो किशोर कुमार के दाहिने गाल के नीचे से पान बह रहा है
0: जी, देखा है सर,
1: ठीक है
0: जी।
1: और वो गायक थे और ये जितने मुकरी और ये सब जो थे वो कोई कनस्टर बजा रहा था, कोई थाली बजा रहा था, कोई यश कर रहा था। तो जब खिड़की खुली तो उसके बाद किशोर कुमार मतलब सुनील दत्त खिड़की पर बैठे और उन्होंने गाना शुरू किया।
2: अरे
0: जी,
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है ये कि वो हमसे कुछ उखड़ा
0: उखड़ा,
1: और पूरा बैकग्राउंड में किशोर कुमार गा रहे हैं करते करते करते करते। लेकिन उनके जो असली जो मतलब जिसको कहिए कि इन दोनों के बीच का जो एक विलेन था वो था महमूद उसने बाद में पकड़ लिया। लेकिन चलो उससे छोड़ो, ये सबसे मतलब नहीं है, लेकिन ये गाना आज भी अभी भी बहुत फेमस है अगर मैं कहूँ तो
0: जी। नहीं, गाना सर सच में, और इस गाने को सबसे अच्छी जो बात लगती है कि अगर आदमी स्ट्रेस में भी है ना तो बस इसे सुन ले, उसका मूड ऐसे ही फ्रेश हो जाता है। तो दोस्तों वैसे भी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, हम सभी
1: अजीब अजीब आवाजें हैं इसमें
0: जी, बांगड़ू भी बोलते हैं ना किशोरदा बीच में, वो शायद सुनील दत्त साहब को बांगड़ू बोलते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई बांगड़ू है तो अपने बांगड़ू के साथ सुने।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो। आज हम किशोरदा की बात कर रहे हैं, उनके गीत, उनके तराने। अगर कोई गाना आपको भी बहुत पसंद है किशोरदा का, तो आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमें, हम आपके लिए वो जरूर चलाएंगे। 9639012111 हमारे स्टूडियो का नंबर है।
1: कृष्णा, एक और भी गाना बहुत ही बढ़िया था
0: जी,
1: और अगर देखा जाए तो वो पाथ ब्रेकिंग गाना था इस फिल्म का, पड़ोसन का
0: जी,
1: एक चतुर नार करके सिंगार। अगर इसमें देखो तो दो करेक्टर बहुत ही अलग अलग थे
0: जी।
1: एक तो किशोर कुमार थे जो कि उसका जवाब दे रहे हैं
0: जी,
1: लेकिन जो असली गाने की शुरुआत करी थी वो महमूद ने करी थी, और बहुत ही मतलब जिसको कहो कि उस समय जो साउथ इंडियन जो टोन होता था ना
0: जी,
1: अयो वो
0: अयो मुत्तु स्वामी
1: वो ये ये करके वो गाना था, और बहुत ही मतलब थोड़ा लंबा गाना था
0: जी,
1: लेकिन बहुत ही बढ़िया गाना है, और आज भी ये गाना सबको बहुत पसंद आएगा
0: जी।
1: एक बार हम इसको सुन के फिर आगे बढ़ते हैं।
0: आइए दोस्तों, सुनते हैं यही तराना सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो पर।
2: यह कच्चा

जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, हमारे इस खास कार्यक्रम की ये कड़ी आज यहीं पर समाप्त होती है। किशोर दा के बारे में ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कैसे आपको ये गाने तराने लगे, और जो जानकारियां यहाँ पर आदरणीय आरपी सिंह सर ने दी हैं, ये आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा 9639012111 पर। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में अगली बार फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो। आज हम किशोरदा की बात कर रहे हैं, उनके गीत, उनके तराने। अगर कोई गाना आपको भी बहुत पसंद है किशोरदा का, तो आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमें, हम आपके लिए वो जरूर चलाएंगे। 9639012111 हमारे स्टूडियो का नंबर।

0: स्वागत है आपका। यह है मेरठ का नंबर वन सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। एक ऐसा कलाकार जिसकी जिंदगी खुद कई बार या तो विवादों में कह सकते हैं या खुद वो अपनी जिंदगी पर्सनल लाइफ की उथल पुथल में फंसा हुआ हो, लेकिन बावजूद उसके जब बात कलाकारी दिखाने की हो तो गाना हो, एक्टिंग हो या जिस भी तरह से वो बॉलीवुड में काम करते थे, हर चीज एकदम उम्दा थी। हम बात कर रहे हैं किशोरदा के बारे में। और जब बात किशोरदा की आती है तो राजेश खन्ना साहब की जो पहली सुपर डुपर हिट फिल्म थी मेरे सपनों की रानी से, जब आपको याद आ जाता है वो दौर, तो सर उस दौर के बारे में, उस फिल्म और किशोरदा, राजेश खन्ना साहब की जुगलबंदी के बारे में बताएं।
1: उस समय तक लोग ये सोचते थे कि किशोर कुमार हैं गायक
0: जी,
1: लेकिन इनको लोग नंबर देने में थोड़ा सा हिचकते थे।
0: अच्छा,
1: कि नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, इस तरह के जब बात आती थी तो थोड़ा सा वहां हो जाता है। और वैसे भी किशोर कुमार बहुत ही मनमौजी आदमी थे
0: जी,
1: इनकी फिल्म ही नहीं थी मनमौजी, या मनमौजी थे भी
0: जी,
1: इनका जो मन मूड होता था वही करते थे। आज इनका मूड नहीं है, कोई बात नहीं, हम नहीं काम करेंगे, कोई ना कोई बहाना बना के, कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ करके वो हट जाते थे। जिसको कहो कि भाग्य ने ऐसा पलटा खाया कि किशोर कुमार कुछ हीरो जो उस समय टॉप के थे उनकी आवाज बन गए।
0: अच्छा,
1: जैसे उसमें सबसे हम ऊपर नाम लेंगे तो वो थे राजेश खन्ना,
0: राजेश खन्ना साहब।
1: राजेश खन्ना के ऊपर किशोर कुमार की आवाज बिल्कुल फिक्स हो गई
0: जी।
1: और जो उनकी एक फिल्म आई आराधना,
0: आराधना
1: सुपर डुपर हिट फिल्म थी
0: जी।
1: और उस फिल्म में अगर देखें तो उस फिल्म ने दोनों लोगों को एक नया आयाम दिया
0: जी,
1: किशोर कुमार को भी दिया और राजेश खन्ना को भी दिया
0: जी।
1: किशोर कुमार को उनके गाने के कारण मिला, राजेश खन्ना को उनकी एक्टिंग के कारण मिला
0: जी।
1: फिल्म बड़ी ही बढ़िया थी, बॉक्स ऑफिस में हमेशा हिट हुई। और एक गाना अगर देखा जाए तो वो उस समय कौन ऐसा था, कौन सी शादी थी, कौन सा फंक्शन था, कौन सी ऐसी जगह थी जहां ये नहीं बजता था, बिना का गीत माला वगैरह को तो छोड़ दो, सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए थे
0: जी।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,
0: भूल
1: कोई हमसे ना हो जाए, ये एक गाना था। एक कमरे में आग जल रही है उसमें ये सब गाना हो रहा था
0: जी,
1: लेकिन बहुत ही फेमस गाना। तो ये गाना सुन के फिर हम आगे चलते हैं।
2: रूप तेरा मस्ताना, प्यार

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी आपने सुना आराधना फिल्म से किशोरदा की आवाज में ये खूबसूरत तराना। दोस्तों गीत तो सारे एक से बढ़कर एक थे इस फिल्म के भी। फिल्म भी एकदम जबरदस्त सुपर डुपर हिट हुई और ऐसा कहा जाता है कि किशोरदा की आवाज के कारण ही राजेश खन्ना साहब हिंदुस्तान के पहले सुपर डुपर स्टार बने थे, जिनको लोग प्यार से काका कहते थे। तो पहले ऐसे सुपर स्टार वो बने सर।
1: बहुत ही बढ़िया इनका जोड़ी थी और दोनों की आवाजें एक दूसरे पे जेल करते थे
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन एक चीज और है कृष्णा, कि कभी कभी दर्शक, हम सब दर्शक हैं, हम सब लिसनर हैं
0: जी,
1: हम लोगों के जो एक जो जहन में एक आवाज आ जाती है
0: जी,
1: कि जैसे मैं आरपी सिंह बोल रहा हूं, तो अगर किसी के जहन में ये आवाज आ जाए कि एक्स वाई जेड की भी आवाज बिल्कुल इसी तरह की है, तो कुछ दिन बाद वो लगने लगता है कि सब एक ही है,
0: एक ही
1: जी। वही चीज अगर देखा जाए तो राजेश खन्ना और किशोर कुमार के साथ। लेकिन फिर भी एक गाना और हम सुनाते हैं इसी आराधना का
0: जी।
1: पूरा कागज था ये मन मेरा,
0: लिख
1: लिया नाम उसमें तेरा।
0: क्या बात है दोस्तों, आइए सुनते हैं यही प्यारा सा तराना सिर्फ आपके अपने सुधार।

0: स्वागत है मैं आपका। ये है मेरठ का नंबर वन सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM और आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एकदम सुपरस्टार सिंगर जिनको उनकी मर्जी के हिसाब से पेमेंट और जो भी वो शरारत करते थे वो भी सही जाती थी। किशोरदा की हम बात कर रहे हैं। सर, आपने मुझे बताया था ऑफ द माइक के एक बार उन्होंने कहा कि ये वाला गाना तो मैं लेट कर गाऊंगा। ये गाने के लिए एक बार उन्होंने सोफा नया मंगवाया अपनी पसंद का।
1: वो सब तुम्हारे सामने अभी आएंगे
0: जी।
1: अभी तो जिंदगी की पहली शुरुआत है
0: जी जी।
1: तो अभी तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन आराधना का ही एक गाना और है। अगर मैं ये लिसनर्स को नहीं सुनाया, जो हमारे चाहने वाले हैं हजारों लाखों करोड़ों, हम उनको नहीं सुनाएंगे तो वो जरूर मुझे कहेंगे कि एक गाना इसने भूल गया। वो था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
0: जी,
1: आज किसी भी उम्र का कोई हो, मैं ये मान नहीं सकता कि कभी उसने ये गाना ना सुना हो, या अगर वो इस समय मान लो 30-35 साल का होगा
0: जी,
1: तो उसने ना गुनगुनाया हो। तो ये गाना अजीब तरह से फिल्माया भी गया था
0: जी।
1: अगर देखें तो इसमें जो हीरोइन है
0: जी,
1: शर्मिला टैगोर, दार्जिलिंग की वादियों में, वो दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन चलती है
0: जी,
1: उनमें वो जा रहे हैं, जा रही हैं, बैठी बैठी किताब पढ़ रही हैं
0: जी।
1: और राजेश खन्ना और उस समय के एक बहुत ही बड़े साइड हीरो थे
0: जी,
1: वो दोनों लोग जो हैं वो जीप में जा रहे हैं, खुली जीप में, और राजेश खन्ना ये गाना गा रहे हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू,
0: आई रुत
1: मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी।

0: जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तुराज कृष्णा और मेरे साथ स्टूडियो में आदरणीय आरपी सिंह सर हैं। और आज भी हम बात कर रहे हैं किशोर दा के बारे में। उनके एक से बढ़कर एक तराने हमारे साथ हैं।
1: किशोर कुमार और राजेश खन्ना का करियर ऐसा था
0: जी,
1: जो कि अमीन साहनी जैसे लोगों की भी जुबान को सुखा देता था।
0: बिल्कुल सर।
1: और वो जितना लोग बोले उतना कम होता था
0: जी।
1: अब क्योंकि मौसम, जैसा शुरू में ही हमने कहा कि बहुत सुहावना आ रहा है और अब हमारा एक बड़ा भारी त्योहार आ रहा है होली
0: जी।
1: एक गाना था कटी पतंग में ही, इसी फिल्म में
0: जी,
1: इसी फिल्म का ये तीसरा गाना कटी पतंग। आज ना छोड़ेंगे बस हम चोली, खेलेंगे हम होली। ये सुना दो तो मजा आ जाए, हो सकता है होली के मूड को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए।
0: और सर कितना पुराना गाना है, आज भी हर डीजे पर होली पर यही बजता है।
1: यही बजता है और सबसे पहले बजता है
0: जी। बिल्कुल।
1: कितने भी गाने बने, देखो एक गाना था जिसके आज भी बजता है
0: जी,
1: वो था मदर इंडिया का। उसके बाद और भी कई गाने बने, लेकिन नई फिल्मों में कटी पतंग का ये गाना ना बजे ये हो ही नहीं सकता। तो ये गाना हम सुने और थोड़ा होली के मूड को अप करें
0: जी।
1: थोड़ा परचेजिंग करने पे लोग लगे, होली के कपड़े खरीदे, होली के लिए तैयारियां करें, तो इस गाने को सुन के उनको याद दिला दीजिए।

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।

0: स्वागत है दोस्तों आपका, मैं हूँ वास्तुराज कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो। स्टूडियो में आज हमारे साथ आदरणीय आरपी सिंह सर भी हैं और हमारे पास एक बक्सा है जिस बक्से में बहुत सारे किशोर दा के गाने हैं और ये बक्सा सर अपने घर से लेकर आए हैं।
1: किशोर कुमार को किसी बक्से में नहीं बंद किया जा सकता, लेकिन हाँ रिकॉर्ड में जरूर बंद किया जा सकता है
0: जी।
1: और अगर देखें तो अब हम लोग आ गए हैं एक ऐसे सफर पे जबकि उनकी एक फिल्म आई अंदाज।
0: अंदाज जी,
1: उन्होंने एक गाना गाया अंदाज में, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: और उसके बाद जो अपनी आवाज निकालते हैं वो किशोर कुमार ही निकाल सकते थे और कोई नहीं निकाल सकता
0: जी।
1: तो इस गाने को सुने और फिर आगे चले।
0: आइए दोस्तों, ये सुपर डुपर हिट तराना सिर्फ आपके लिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
2: जिंदगी

0: स्वागतम, मैं हूं वास्तुराज कृष्णा। और जैसे कि गाने में अभी आपने सुना किशोरदा की, आज हम बात कर रहे हैं और आदरणीय सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, अगला किस्सा किशोरदा की जिंदगी से, हम किस साल तक पहुंच गए हैं?
1: अभी हम लोग 1971 पे चल रहे हैं और अगर देखा जाए तो यहाँ मधुबाला की डेथ हो चुकी थी
0: जी,
1: और उनकी तीसरी वाइफ नहीं आई थी
0: जी,
1: योगिता वाली
0: जी।
1: लेकिन हाँ, ये जरूर है कि किशोर कुमार ने अपने गाने का पैनापन बढ़ाते चले जा रहे थे। उसी समय एक फिल्म आई अमर प्रेम
0: जी,
1: और अमर प्रेम में उन्होंने एक गाना गाया, चिंगारी कोई भड़के तो सावनों से बुझाए।

0: ये गाना भी बहुत ही फेमस हुआ, और उस गाने, मैं ये नहीं कहूंगा कि गाने से फिल्म फेमस हुई या अमर प्रेम से ये गाना फेमस हुआ, लेकिन हाँ ये दोनों चीजें बहुत ही फेमस थी और टॉप हिट फिल्मों में इसका नाम आता था।
1: जी बिल्कुल, सावन जो आग लगाए फिर उसे कौन बुझाए। आइए दोस्तों, किशोर दा की आवाज में ये खूबसूरत तराना आपके लिए।

0: जैसा कि आपने गीत में सुना, किशोरदा की आवाज यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं। आदरणीय आरपी सिंह सर हमारे साथ स्टूडियो में हैं और इस कार्यक्रम में हम हमेशा उन हस्तियों का जिक्र करते हैं, उन बीते गुजरे जमाने के कलाकारों की बात करते हैं जो आज भी हमको उतना ही ज्यादा सुकून और आनंद देते हैं। और किशोरदा सर एक ऐसी सिंगर है, चाहे बच्चा बूढ़ा जवान सब सुनते हैं इनके गाने, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई गाना सबको पसंद आता ही है। सर
1: बिल्कुल ठीक बात तुमने कही, और सब आदमी ये गाना सुनते थे, आज भी सुनते हैं। अगर कोई पुराने गाने का किसी को शौक है
0: जी
1: तो जरूर सुनते हैं। अब उनकी एक और फिल्म आई 1972 में
0: जी,
1: ये बंगाली के सुपर टॉप हीरो थे,
0: बंगाली फिल्मों के।
1: दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा।
2: दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ।
1: अमानुष फिल्म का ये गाना,
0: अमानुष फिल्म जी जी जी।
1: और ये गाना सुनो फिर देखो कि अब किशोर कुमार जो है वो डाइवर्सिफाई होने लगे धीरे धीरे, कुछ ऐसे लोगों के लिए भी गाना गाने लगे जो कि शायद उनको कभी सोचा भी नहीं होगा कि किशोर कुमार उनके बैकग्राउंड सिंगर होंगे
0: जी।
1: तो ये गाना हम सुन लें,
0: आइए दोस्तों किशोरदा की आवाज में ये सुपरहिट गीत।

0: दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, ये गाना सुनकर सर मुझे पता नहीं क्या क्या चीजें याद आ गई। तो अब कोई अच्छा ऐसा गीत भी आप बताइएगा जिससे दिल खुश भी हो जाए, क्योंकि अमानुष बनाकर छोड़ा लोगों का सर दिल टूटता है, उसके लिए भी किशोरदा के बहुत सारे गाने हैं।
1: नहीं बहुत से हैं, लेकिन लगता है दिल तुम्हारा कई बार टूटा है।
0: सब टूटता ही रहता है।
1: लेकिन नहीं, एक बात बताओ, तुम दिल तोड़ बात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कह रहे हो कि कोई, जैसे बहुत से लोग तो कहते हैं ना यार दिल टूट गया मुझे, जो है आज सब्जी में पनीर नहीं मिली, तो इस तरह के लिए कह रहे हो?
0: हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही सर।
1: चलो मैं तुम्हें बचा के निकाल
0: लूं। थैंक यू सो मच सर।

0: दोस्तों आज हम यहाँ पर किशोरदा की जैसे की बात कर ही रहे हैं।
1: मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। एक फिल्म आई थी दाग
0: जी,
1: और ये भी अमिताभ बच्चन की ही थी। अब अमिताभ बच्चन फिर आ गए इनके साथ
0: जी,
1: लेकिन बहुत ही बढ़िया गाना और बहुत ही मतलब अलग तरीके का ये गाना था। इसको सुन के फिर आगे बढ़ते
0: हैं। दोस्तों आपके लिए चलाते हैं सुबह की आजाद हिंद रेडियो।

0: सुपर हिट तरह सुन रहे हैं आप। यह है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो। किशोरदा की बात हो तो गाड़ी में जो वॉल्यूम होता है वो पूरा ना हो जब उनका गाना चले, ये कैसे हो सकता है सर? क्या कभी आप भी ऐसा करते हैं कि किशोरदा का कोई गाना आ गया और आपने बोला कि बस अब थोड़ी देर शांत रहो, ये सुने दो कोई गाना? कभी मतलब आपके साथ ऐसा होता है सर?
1: नहीं, मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है क्योंकि मुझे ड्राइविंग बड़ी पसंद थी
0: जी।
1: और जब मैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते थे तो उस समय मैंने जो गाड़ी खरीदी थी मारुति 800
0: जी,
1: तो उससे हम लोग अक्सर बड़ी लंबी लंबी ड्राइव करते थे। जैसे दिल्ली से मैं काठमांडू चला गया,
0: अच्छा,
1: फिर उसके बाद दिल्ली से बनारस जो मेरा घर है वहां मैं अक्सर जाया करता था
0: जी।
1: तो हम लोग ट्रेन तो भूल ही गए थे, तो हम लोग गाड़ी से भी जाते थे क्योंकि मेरे साथ एक मेरा पेट कुत्ता भी रहता था
0: जी,
1: तो उसको आसानी हो, तो मेरा बेटा और वो पीछे बैठते थे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ आगे बैठते थे और किशोर कुमार के गाने बहुत सुनते थे।

0: किशोर कुमार के गाने, और हम लोग सब साथ ही साथ आगे बढ़ते चले गए और हमारी सफर भी खत्म हो जाता था। अब एक सफर का ही गाना हम तुम्हें ये सुनाएं
1: जी।
0: जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीवन जीने के लिए।

0: ये गाना हम सुने,
1: ये मोटिवेशनल गाना है,
0: मोटिवेशनल गाना है।
1: आइए दोस्तों सुनते हैं यही सुपर हिट और दिल को छू जाने वाला तराना आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
2: जी।

0: जय हिंद दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM और आज हम यहाँ पर किशोरदा की बात कर रहे हैं, उन्हीं के गाने चला रहे हैं। और जैसा कि सर ने हमें थोड़ी देर पहले भी बताया, अब हम साल 74 यानी कि 1974 के उस दशक में प्रवेश कर चुके हैं। और किशोरदा की खास बात यह थी कि जब वो राजेश खन्ना साहब के लिए गाना गाते थे तो उनके जैसा स्टाइल अपनी आवाज में मॉड्यूलेट कर देते थे, जब देवानंद साहब के लिए तो वो हर एक्टर के हिसाब से अपनी आवाज को बदल लिया करते थे। सर
1: नहीं, बिल्कुल सही तुमने कहा, क्योंकि देवानंद की एक अलग स्टाइल थी
0: जी,
1: सिर झुका के चलना, उसको उस तरह से करना और ब्रेक ले लेके चलना, उस तरह से उनके गाने में भी उसी तरह से ब्रेक आते थे
0: जी।
1: जहां तक बात राजेश खन्ना की है, वो थोड़ा मतलब दूसरे तरह की एक्टिंग करते थे,
0: सुर लय ताल थी,
1: रिदम लगा के देते थे, तो उनके गाने उसी हिसाब से होते थे
0: जी।
1: तो रोटी फिल्म आई 1974 में, और अगर देखें तो सारे गाने उसके सुपर हिट थे
0: जी।
1: लेकिन सारे तो हम नहीं सुना सकते, हमारे लिसनर कहेंगे कि ये तो सब एक ही फिल्म के गाने सुन लिए, इससे अच्छा हम कैसेट सुन ले या हम दूसरी चीज सुन ले, कैसेट तो नहीं लेकिन हाँ हम यूट्यूब पे सुन ले। लेकिन उससे अच्छा है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या आप ऑफिस में बैठे हैं या आप अपने घर पे बैठ के सुन रहे हैं, तो इतना तो जरूर आप कभी ना कभी कहते होंगे किसी गोरे चिट्टे आदमी को या अपनी गोरी चिट्टी गर्लफ्रेंड को या कोई ऐसी लड़की जिससे आप बात करना चाहते हो वो बहुत गोरी हो, तो इतना जरूर हो सकता है कि आपके जहन में आता हो कि गोरे रंग पे देखो इसको कितना गुमान है
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल सर,
1: तो गोरे रंग पे गुमान तो ये बहुत पुरानी बात है, पुराने जमाने से राज कपूर से लेकर के अब तक गोरे रंग की फिल्मों पे लोगों ने कमेंट करते रहे हैं
0: जी,
1: क्योंकि अक्सर हीरोइनें बहुत गोरी दिखाई जाती थी
0: जी।
1: शायद एक ही हीरोइन ऐसी थी जिसको कि थोड़ा बहुत डार्क कलर में भी दिखाया गया, जैसे नूतन वगैरह इन लोगों का
0: जी,
1: लेकिन ज्यादातर तो उनको एकदम डाई कर दिया जाता था और वो गोरी हो जाती थी। और उसी तरह की एक फिल्म रोटी आई
0: जी,
1: उसमें एक गाना इतना तगड़ा आया, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।
2: गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।
1: तो ये गाना हम सुन लें,
0: आइए दोस्तों सुनते हैं सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

0: अभी आपने सुना गोरे रंग बिना इतना गुमान कर, ये सुपरहिट तराना रोटी फिल्म के तकरीबन सारे ही गाने एकदम सुपर डुपर हिट रहे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं।
1: हाँ, अभी एक और गाना मैं सुनाना चाहता हूँ रोटी का ही।
0: जी,
1: और वो गाना बहुत ही आज भी, आज के भी समाज पे सही उतरता है, कल के भी समाज पे सही था और आगे आने वाले समाज पे भी
0: सही रहे,
1: सही रहेगा। और ये हर एक के लिए जरूरी है, वो चाहे हमारे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो हमारे जो भी हो।
0: जी,
1: वो गाना था, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बाबू
0: जी,
1: ये गाना अगर हो तो आज से हम इसको जोड़ सकते।
0: बिल्कुल सर, और आज भी ये सच है कि पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को बेवकूफ मत समझो बाबू।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM और आज हम किशोरदा की बात कर रहे हैं और अब साल 1975 की बात करते हैं। सर,
1: साल 1975 की बात करें तो साल 1975 में एक ऐसी फिल्म आई
0: जी
1: जो कि हीरो हीरोइन के लिए तो फेमस थी ही थी
0: जी,
1: लेकिन एक ऐसे साइड हीरो को भी उसने फेमस बना दिया जो कोई सोच नहीं सकता था
0: जी,
1: वो थे अमजद खान।
0: अमजद खान जी जी जी
1: और उसने जो आज एक्टिंग कर ली, आज अमजद खान हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन अभी भी कभी घर पे साल दो साल में या आपस में दोस्त जरूर उनके डायलॉग को बोलते हैं, तेरा क्या होगा कालिया, वो अलग नामों

0: से बोलते हैं, कई फिल्मों में उनके इस डायलॉग को तेरा क्या होगा कृष्णा, तेरा क्या होगा, ये वो लोग बोलते थे
1: जी।
0: लेकिन बहुत ही टॉप फिल्म थी, उसमें जो हीरो हीरोइन थे वो भी बहुत टॉप के लोग थे
1: जी।
0: धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ये सब बहुत ही टॉप के लोग थे। जया भादुड़ी एक अलग रोल में थी और संजीव कुमार एक अलग रोल में थे
1: जी।
0: तो इस टॉप फिल्म का एक गाना था,
1: दोस्ती को लेकर जब भी बात होती है तो ये
0: इस गाने की जरूर आती है। मन्ना डे और किशोर कुमार ने गाया था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे।

0: तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत ही जबरदस्त गाना था।
1: आइए दोस्तों सुनते हैं शोले फिल्म से ये सुपर हिट गाना सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुभा भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम और आज हम किशोरदा की बात कर रहे हैं, उन्हीं के तराने आपको सुना रहे हैं। और 1975 तक किशोरदा का सिक्का चलता था बॉलीवुड के अंदर, वो हर बड़े हीरो के लिए गाने गाते थे।
1: अगर देखें तो एक और गाना था
0: जी,
1: जिसमें कि आज की क्या मतलब, अगर देखा जाए तो उस समय की टॉप हीरोइन हेमा मालिनी की भी आवाज है
0: जी, बिल्कुल।
1: और वो जो है वो अलग तरीके का गाना है
0: जी,
1: कोई हसीना जब रूठ जाती है तो एक दो तीन हो जाती है, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो
0: एक दो तीन हो जाती है।
1: हाँ नहीं, जब कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। और उसमें बीच में हेमा मालिनी गाली दे रही है
0: जी। आइए दोस्तों, शोले फिल्म से ही ये सुपरहिट तराना सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद में।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। किशोरदा के तराने चल रहे हैं, ये है आपका अपना सुभारती आजाद हिंद रेडियो। और आज हम यहाँ पर बात भी कर रहे हैं किशोरदा की, उन्हीं के गाने आपको सुना रहे हैं और आदरणीय आरपी सर हमारे साथ में बैठे हुए हैं। और बात जब अमिताभ बच्चन की हो तो 1973 में अभिमान फिल्म से एक सफर शुरू हुआ किशोरदा की आवाज के साथ, और एक फिल्म आई जो आज तक सिक्का चलता है, जिसका वो फिल्म थी डॉन।
1: डॉन एक बहुत ही अलग टाइप की फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन के रोल ने सबको बहुत ही मतलब जिसको को अमेज किया था
0: जी।
1: सब लोग आश्चर्यचकित थे अमिताभ बच्चन के उस रोल से। और एक और रोल उनका था कि जब वो पान खा के गाना गाए, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंदा कल का ताला।
0: ये गाना तो आज भी सारे पान प्रेमी
1: नहीं जी। आप तुम देखो जैसे अभी हम कह रहे थे होली
0: जी,
1: होली पे ये गाना जितने भी जगह होली मनाई जाती है
0: जी
1: वहां जरूर बजेगा। और दूसरी बात एक और है कि बनारस की होली बहुत फेमस है। बनारस में दशाश्वमेध घाट जहां काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसके पहले एक चौराहा है, वहां पे अभी भी बनारस के लोग एक खुल के होली मनाते हैं।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक,
1: मतलब शाम का टाइम होता है
0: जी,
1: और खुल के होली मनाई जाती है। उसमें हुड़दंग मचाते हैं, हुड़दंग में जो वैसे कवि लोग हैं वो अपनी कविता सुनाते हैं
0: जी।
1: और जितने देश विदेश के नेता हैं उनको टाइटल दी जाती हैं, अलग अलग होली की टाइटलें दी जाती हैं, उसमें भी ये गाना जरूर बजता है।
2: खई के पान बनारस वाला,
1: ये खई के पान बनारस वाला तो बनारसियों के लिए एक बहुत प्राइड का विषय
0: जी सर।
1: तो ये गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: तो आइए दोस्तों, बनारसी साड़ी के बाद पेश आपके लिए खई के पान बनारस वाला, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो पर।

सीधा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से।

गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पहन बना रसवाला

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। किशोरदा की जिंदगी की बातें और उन्हीं की फिल्मों के तराने हम आपको सुना रहे हैं, और अगर आपको भी पसंद है कोई गाना किशोरदा की आवाज में तो हमें जरूर बताइएगा।
1: जो तुमने बताया मैं उसी पे आगे कहता हूँ कि अगर वो कोई गाना पसंद है, क्योंकि अभी किशोर कुमार का सीरीज चल रही है
0: जी,
1: तो अगर आप हमारे रेडियो स्टेशन को फोन करके बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो गाना अगर पीछे का भी है
0: जी,
1: जो सन बीत चुके उनसे भी ले लें
0: जी।
1: लेकिन ये जरूर मैं पक्का कहूंगा कि जो आपके जितने पसंद के गाने हैं उनको आने वाले सीरीज में हम लोग जरूर लेने जा रहे हैं।

0: चल रहे हैं किशोरदा की आवाज में और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूं वासुराज कृष्णा, मेरे साथ स्टूडियो में आदरणीय आरपी सिंह सर हैं। और जब किशोरदा की गानों की बात हो तो मुकद्दर के सिकंदर की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। वो मोटरसाइकिल पर सर गाना और वो उस जमाने के सारे लड़कों का एक ड्रीम तो होता ही था।
1: बिल्कुल सही बात कही, लेकिन उस समय अगर देखें तो किशोर कुमार का तीसरी शादी 1976 को हो चुकी थी
0: जी,
1: और 1978 मतलब ये फिल्म के गाने गाते गाते वो शादी टूट भी गई थी।
0: अच्छा,
1: योगिता बाली के साथ
0: जी।
1: तो बहुत कम समय वो चला, लेकिन किशोर कुमार का एक ये गाना बहुत ही फेमस हुआ, मुकद्दर का सिकंदर, ओ साथी रे तेरा बिना क्या जीना।
2: ला ला ला ला,
1: ये हो सकता है कि इसी जुदाई में उन्होंने इतना मतलब जिसको कहो कि इतना टफ गाना गाया, इतना दुख भरा गाना गाया, लेकिन बहुत ही बढ़िया ये गाना था और आज भी ये गाना सुनने में अच्छा लगता है। तो ओ साथी रे हम सुने,
0: आइए आपके लिए सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

सुनते रहिए सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, वास्तुराज कृष्णा के साथ। जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, वास्तु कृष्णा के साथ।

जय हिंद दोस्तों, आपको छोड़े जाते हैं सुपरहिट तराने के साथ। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगली कड़ी में अगर आप भी चाहते हैं किशोर दा की कुछ आपकी पसंद के गाने चलाएं तो मैसेज रिकॉर्ड करके या लिख कर भेज सकते हैं 9639012111 पर। जय हिंद, जय भारत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
3: साल 1857, तारीख 10 मई, जब मेरठ की धरती से उठी एक चिंगारी ने पूरे देश में आजादी की मशाल जला दी थी। मेरठ की इसी धरती से आजादी की मशाल जलाने वाले शहीद धन सिंह कोतवाल और उन चाबाज सिपाहियों को नमन जिन्होंने फिरंगियों की चूले हिला दी। आज क्रांति दिवस पर आइए उस शौर्य को याद करें जिसने हमें आजाद भारत का सपना दिखाया। सलाम उन शहीदों को। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
5: माँ वो धागा है जो पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
1: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज

0: कल्चरल एक्टिविटीज की जिम्मेदारी थी वो मेरी ही थी।
1: ओके
0: कुछ भी होता था इस तरह का प्रोग्राम, कोई भी नाटक, कविता या कुछ भी, कहीं कुछ होता था तो मैं ही उसके लिए शुरू में नाटक लिखने शुरू किए, कविताएं या कुछ भी थी, तो धीरे धीरे लिखना और अधिक होता गया। और फिर ये था कि पहले तो ये था कि कोई टॉपिक मिला है तब लिखा है, लेकिन फिर ऐसा है कि जो भी आसपास हमारे घट रहा है या जो भी कुछ हो रहा है तो उसी पर लिखना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसा विशेष बंधन नहीं है कि इसी पर लिखना है, जो भी सामाजिक परिवेश होता है उसी पर।

0: वो सिपाही नहीं वतन के रखवाले थे। उनके पास आधुनिक हथियार तो नहीं थे, पर सीने में फौलादी जिगर और आंखों में आजाद भारत का सपना था। मेरठ की माटी के उन अमर शहीदों को याद करने का दिन है आज, क्रांति दिवस। शहीदों के बलिदान को हमारा कोटि कोटि नमन। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
1: अरे अंकल सुनिए जरा।
2: हाँ बेटा बोलो।
1: अंकल जी वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
3: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियांक गर्ग के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर वन आँखों के डॉक्टर है, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
4: डॉक्टर प्रियांक गर्ग MBBS MS ऑप्थल्मोलॉजी FNB VR सर्जन FICO लंदन FAICO FVRS PDCR रेटिना सर्जन ROP स्पेशलिस्ट
5: विद मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
4: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज गढ़ रोड मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
6: डॉक्टर प्रियांक गर्ग, न्यूट्रिमा आई केयर, आओ अच्छा देखें।

0: देशभक्ति कविताओं के साथ क्रांति दिवस स्पेशल कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे अध्यापिका कवियत्री मुक्ता शर्मा जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। अगली देशभक्ति कविता की तरफ अब आपकी हम चलना चाहेंगे, तो हम चाहेंगे आप अगली देशभक्ति कविता अपनी सुनाए हमें, हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल, यह है मेरा एक गीत है और इसमें मैंने बखान किया है भारत देश का।
0: ओके,
1: तो ये किसी एक विशेष घटना पर नहीं है, ये
0: ठीक है,
1: संपूर्ण भारत के लिए एक मेरी रचना है, गीत है मेरा, प्रस्तुत करती हूँ।

पूरब हो या हो पश्चिम, हर छोर है मन भावन। उत्तर हो या हो दक्षिण, हर छोर है मन भावन। नदियां हैं इसकी अमृत, कण कण है इसका पावन। नदियां हैं इसकी अमृत, कण कण है इसका पावन। मरुथल भी इस धरा का। आप देखिए, राजस्थान की शान ही निराली है, तो उसी के लिए कहा है कि मरुथल भी इस धरा का नंदन से कम नहीं।

श्री राम कृष्ण जीवन उत्कर्ष है यहाँ पर, श्री राम कृष्ण जीवन उत्कर्ष है यहाँ पर।

0: मेरे वतन की।
1: क्या बात है, मिट्टी मेरे वतन की। उम्मीद है श्रोताओं आपको ये कविता पसंद आई होगी, और आज देशभक्ति की कविताओं में ओतप्रोत हैं यहाँ पर हम सभी।
2: होशियार होशियार।

0: अरे बहन, कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
1: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
0: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
2: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चेदानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
3: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनो एंडोस्कोपी केल जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
4: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज गर्ग रोड मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
5: एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: देशभक्ति कविताओं के साथ क्रांति दिवस स्पेशल कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे अध्यापिका कवित्री मुक्ता शर्मा जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आर जे पंकज के साथ आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। आगे मैम आपसे जरूर हम ये जानना चाहेंगे, कविताएं होती हैं, लेखनी होती हैं या आपका अपना कोई हुनर होता है, उसमें आपको सपोर्ट करने वाले जरूर आपके साथ होने चाहिए, तभी एक हिम्मत आती है, तभी और अच्छा होता है। तो आपसे जरूर जानना चाहेंगे आपके सपोर्ट सिस्टम कौन है।
1: जी बिल्कुल, सपोर्ट सिस्टम सबसे पहले तो मेरे गुरु कृष्ण कुमार बेदिल जी,
0: जी
1: जिन्होंने बेसिकली मैं गजलें लिखती हूँ अधिकतर, और जो गजल का जो बेसिक है वो मैंने उन्हीं से सीखा। और फिर उसके बाद मतलब ये तो हुआ लिखने का सपोर्ट, और जो ऐसी परिस्थितियां देते हैं, मतलब जो ऐसा माहौल देते हैं कि मैं लिख सकूं, उसके बाद वो है मेरे पति।
0: क्या बात है।
1: मेरा परिवार
0: जी।
1: वो मतलब बहुत खुश होते हैं मेरी उपलब्धियों पर और मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, तो उनके लिए उसके लिए थैंक्स कहना चाहूंगी मैं अपनी फैमिली को बहुत बहुत।
0: आपकी लेखनी वाकई में गजब है और बहुत अच्छा लग रहा है। देशभक्ति कविताएं हम आपकी सुन रहे हैं। आगे अब क्योंकि देशभक्ति कविता सुनने का हमने आपसे वचन लिया है, एक और कविता हम आपसे फिलहाल सुनना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल, ये भी एक मेरी रचना है, देश पर किसी खास मौके पर नहीं है, ये भी इसी तरह की है जैसी ये पहली थी
0: जी।
1: कि जब तक रहे हृदय में स्पंदन, करती रहूं तेरा ही वंदन, ऐ मेरे भारत के कण कण, ऐ मेरे भारत के कण कण। ये माँ को ही समर्पित है क्योंकि हम माँ भारत माँ कहते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो उन्हीं के लिए है। माँ तेरा श्रृंगार अलौकिक, स्वयं प्रकृति ने आन किया है, और विधाता ने तुझको छह ऋतुओं का वरदान दिया है।
0: क्या बात है।
1: स्वर्ण सरीखी रस देकर तुझे औषधियों की खान किया है, स्वर्ग धरा पर है तो यह है, सबने यही बखान किया है। फल और फूल हैं अमृत जैसे, अन्नपूर्णा बन दिए हमें धन, हमें अन्न, क्योंकि अन्नपूर्णा
0: जी
1: हमारी धरती है। फल और फूल हैं अमृत जैसे, अन्नपूर्णा बन दिए हमें अन्न, ऐ मेरे भारत के कण कण। और देखिए कि एक से एक अनोखे पर्वत
0: जी,
1: पग पग जिनका तीर्थ पावन, झरने घाटी झीले अद्भुत, कैसे करे लेखनी वर्णन, इसका तो मरुथल भी सुंदर, और मैदानों का क्या कहना, सागर और पठार निराले, देश मेरा संसार का गहना, पावन है हर नदी यहाँ की, और माटी है इसकी चंदन, ऐ मेरे भारत के कण कण, ऐ मेरे भारत के कण कण, जब तक रहे हृदय में स्पंदन, करती रहूं तेरा ही वंदन, ऐ मेरे भारत के कण कण।
0: क्या बात है।

0: माँ वो दुआ है जो हर वक्त हमारे साथ चलती है। आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: इतिहास के पन्नों को पलटिए। 10 मई 1857 का वो दिन जब भारत ने पहली बार संगठित होकर गुलामी की बेड़ियां तोड़ने की कसम खाई थी। वो तारीख जब मेरठ में क्रांति का सैलाब आया। इतिहास गवाह है, क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। आज क्रांति दिवस के मौके पर हम उन वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
2: संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: देशभक्ति कविताओं के साथ क्रांति दिवस स्पेशल कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे अध्यापिका कवियत्री मुक्ता शर्मा जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। इस वक्त यहां पर मौजूद हैं मुक्ता शर्मा जी, आप कवियत्री हैं और शिक्षिका भी हैं। मैम, 10 मई 1857 क्रांति धारा मेरठ में आज हम बैठे हैं। एक कवित्री होने के नाते जब आप इस तारीख को सुनते हैं, इस दिन के बारे में सुनते हैं, तो क्या आप अपने विचार इस पर रखते हैं?
1: जी बिल्कुल, एक तो सच में मैं इस बात पर बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि ये जो क्रांति की शुरुआत है वो यहाँ से हुई है और इसी के लिए मेरठ में खास छुट्टी भी होती है 10 मई की
0: जी।
1: उस दिन विशेष यहाँ पर अवकाश रहता है, तो उसके लिए चार पंक्तियां लिखी हैं।
0: बिल्कुल स्वागत है
1: मेरठ के लिए
0: जी,
1: ये बहुत गर्व है मुझे। मेरी शिक्षा दीक्षा भी यहीं की है, मैं पली बड़ी यहीं पे हूँ, मेरा विवाह भी यहीं हुआ, मतलब सब कुछ मेरठ में ही है
0: जी।
1: तो मेरठ वासी होने के उसमें बहुत गौरव होता है। तो उसको इन चार पंक्तियों में व्यक्त किया है कि

0: स्वतंत्रता की अलख जगाने वाला मेरठ मेरा है, स्वतंत्रता की अलख जगाने वाला मेरठ मेरा है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी कविता। और उम्मीद है आज की देशभक्ति की कविताएं आपने सुनी हमारे श्रोताओं, आपको पसंद आई होंगी। मैम, चलते चलते हमारे श्रोताओं तक, हमारे लिसनर्स तक कोई अच्छा संदेश हम जरूर चाहेंगे आप पहुंचाएं।
0: पहले संदेश दूं, उसके बाद चार पंक्तियों से मैं विदा लूंगी
1: जी।
0: तो मैं यही कहना चाहती हूं कि जैसा कि एक विशेष अब ये अटैक हो गया तब हमारे दिल में देशभक्ति की भावना जाग रही है
1: जी, जी।
0: या फिर कुछ विशेष तिथियों पर भी ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे दिल में राष्ट्र सर्वोपरि सदैव रहना चाहिए
1: जी।
0: और छोटे छोटे कार्य हैं जिससे हम अपने देश को थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि एक ये देखती हूँ मैं, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि लोग अपना मतलब कूड़ेदान में या किसी प्रॉपर जगह पे कूड़ा ना डाल के नालियों में रख देते हैं और वो फिर उससे क्या होता है कि वो ड्रेनेज सिस्टम सारा हमारा फेल होता है। दूसरा कि हमारी जो पुरातन परंपरा है कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए, कम से कम 5 वृक्ष लगाने का हमें था और ये हमने बंद कर दिया है, तो हमें फिर से पर्यावरण की तरफ लौटना होगा, नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि क्या टेम्परेचर का हाल हो रहा है। तो अंत में चार पंक्तियों समर्पित करती हूँ, राष्ट्र के नाम ही हैं ये भी, कि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्रांति क्या है? अन्याय के खिलाफ उठने वाली पहली आवाज। 10 मई 1857 को शहीद धन सिंह कोतवाल और उन वीर सिपाहियों ने मेरठ से यही आवाज बुलंद की थी। आज का युवा उसी जज्बे को सलाम करता है, क्योंकि देश आज भी उन्हीं के बलिदान पर खड़ा है। अपनी विरासत को जानो, अपने वीरों को पहचानो। 10 मई क्रांति दिवस के सभी वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

क्रांति दिवस स्पेशल प्रोग्राम में अपनी देशभक्ति कविता के साथ अब आप सुनेंगे प्रेमचंद जी को आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

है पूजा, मस्जिद में लगती है अजान। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, यही भारत की है पहचान, यही भारत की है पहचान। सुख दुख में सब साथ निभाते, जय हो तेरी हिंदुस्तान। पत्थर की जहाँ पूजा होती, अतिथि को कहते भगवान, अतिथि को कहते भगवान। ऐसे प्यारे देश की खातिर मर मिट हम जाएंगे, भारत माँ को जो हाथ लगाए उसका सर कलम कर जाएंगे, उसका सर कलम कर जाएंगे। धन्यवाद।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ। माँ का प्यार वो रोशनी है जो हर अंधेरे को दूर कर देती है। आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: क्रांति दिवस स्पेशल प्रोग्राम में अपनी देशभक्ति कविता के साथ अब आप सुनेंगे प्रेमचंद जी को आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।
1: वीर शहीदों की शहादत का, वीर शहीदों की शहादत का

दान करें, जिनके सपनों में भारत माँ अक्सर आती जाती थी, जिनके सपनों में भारत माँ अक्सर आती जाती थी, अपनी पीड़ा दर्द कहानी हर पल याद दिलाती थी, जालिम गोरों के चंगुल से भारत माँ को छुड़ाना था, जालिम गोरों के चंगुल से भारत माँ को छुड़ाना था, जान चली जाए चाहे कि अमां से वादा निभाना था, आजादी का बिगुल बजा कर खुद फांसी पर झूल गए, कांटों की सैया पर सोए यूं उनकी शहादत भूल गए, कांटों की सैया पर भूले क्या उनकी शहादत भूल गए। धन्यवाद।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: क्रांति दिवस स्पेशल प्रोग्राम में अपनी देशभक्ति कविता के साथ अब आप सुनेंगे प्रेमचंद जी को आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।
1: मेरा मेरठ बड़ा महान, जाने इसको सकल जहान। मेरा मेरठ बड़ा महान, जाने इसको सकल जहान।

गांव पांचली थाना जानी धन सिंह गुज्जर है मान। गांव पांचली थाना जानी धन सिंह गुज्जर है मान। अरे आजादी का बिगुल बजाया धन सिंह मेरठ की शान। मेरा मेरठ बड़ा महान, मेरा मेरठ बड़ा महान। 1857 की क्रांति का नायक धन सिंह गुज्जर थी जान। 1857 की क्रांति का नायक धन सिंह गुज्जर थी जान। 1839 कैदियों को रिहा किया, गोरों से युद्ध किया घमासान। मेरा मेरठ बड़ा महान, मेरा मेरठ बड़ा महान। शहीद मंगल पांडे तुमको जाने सारा हिंदुस्तान। अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी गोरों पर बंदूक तान। मेरा मेरठ बड़ा महान, मेरा मेरठ बड़ा महान।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है कि माँ के चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: क्रांति दिवस स्पेशल प्रोग्राम में अपनी देशभक्ति कविता के साथ अब आप सुनेंगे प्रेमचंद जी को आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।
1: नमन करें उन वीरों को जो देश की खातिर मर मिट गए, कुछ हंस के फांसी

को जो देश की खातिर मर मिट गए, कुछ हंस के फांसी पर लटक गए, पल भर में जहां से सिमट गए, सीने पर अपने गोली खाकर आजादी हमको दिला गए, आजादी हमको दिला गए। क्या क्या ना जुल्म हुए उन पर, वे अपने लहू को बहा गए। याद करें उन वीरों को जो आजादी का बिगुल बजा गए, अपने प्राणों की आहुति से हमको आजादी दिला गए। कांटों की सैया पर सोकर हमको गद्दों पर सुला गए, भारत माँ की आन बान पर हाथों में तिरंगा लहरा गए।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

क्रांति दिवस स्पेशल प्रोग्राम में अपनी देशभक्ति कविता के साथ अब आप सुनेंगे प्रेमचंद जी को आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

है एक हमारी भारत माता, एक सूत्र में बंधे हुए सब इस माटी से गहरा नाता, हिंदू मुस्लिम सिख।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

ओटीपी किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: माँ वो धागा है जो पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर तकलीफ में जो मुस्कुराए वो है माँ, हर दर्द की जो दवा बन जाए वो है माँ। अपनी खुशियाँ हम पर न्योछावर कर दे ताकि हम चैन से सो पाएं, वो है माँ। आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: अरे बहन, कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
1: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
0: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
2: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चेदानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
3: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनो एंडोस्कोपी केल जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
4: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यू टीमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज गर्ग रोड मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
5: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं हैं।
2: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
3: नो पेन नो स्कार नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। डाविंसी क्लिनिक,
2: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128, एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गढ़ रोड, मेरठ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

माँ वो दुआ है जो हर वक्त हमारे साथ चलती है। आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ। एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटका थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें। विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: अरे अंकल सुनिए जरा।
2: हाँ बेटा बोलो।
1: अंकल जी, वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
3: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियांग गर्ग के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर 1 आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
4: डॉक्टर प्रियांगर, MBBS, MS, ऑप्थेल्मोलॉजी, FNB, VR सर्जन, FICO, लंदन, FAICO, FBRS, PDCR, रेटिना सर्जन एवं ROP स्पेशलिस्ट
5: विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
6: For consultancy, you may visit Newtima Hospital, opposite LLRM Medical College, Gur Road, Meerut. You may contact 9837056192.
7: Dr. Priyank Garg, Newtima Eye Care. आओ अच्छा देखें।
0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
8: घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम, सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय NH58 सुभारतीपुरम मेरठ में।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटखा थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें। विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़ेदान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ओटीपी किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: 長官。
1: बेटी बोझ नहीं घर की शान है, उसे पंख दीजिए, वो आसमान छू लेगी। बेटी को पढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम। सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं। इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो, रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

रंग रूप या वजन, इनको लेकर किसी का मजाक ना उड़ाएं। हर इंसान अपने आप में खास है। खूबसूरती दिल में होती है, दिखावे में नहीं। सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता नहीं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। बच्चों पर प्रेशर नहीं, उनका भरोसा बनिए। उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें खिलने दीजिए। स्ट्रेस फ्री बचपन, बेहतर भविष्य। तो बस सही समय पर सही तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शादी हो या पार्टी, उतना ही लें थाली में कि फेंका ना जाए नाली में। आपकी फेंकी हुई एक रोटी किसी भूखे का पेट भर सकती है। खाना बचाइए और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने दीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

कमाई कितनी भी हो, बचत जरूरी है। छोटी छोटी बचत ही बुरे वक्त का सहारा बनती है। इसीलिए अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा आज ही बचाना शुरू करें। आज ही इन्वेस्ट करें, कल को सुरक्षित करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जिंदगी के बाद भी किसी की आंखों की रोशनी या धड़कन बनिए। आपका ये एक फैसला किसी एक की तो जिंदगी बेहतर बना ही सकता है। अंगदान महादान। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ओटीपी किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

बेटी बोझ नहीं घर की शान है, उसे पंख दीजिए, वो आसमान छू लेगी। बेटी को पढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम। सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं, इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो, रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

रंग रूप या वजन, इनको लेकर किसी का मजाक ना उड़ाएं। हर इंसान अपने आप में खास है। खूबसूरती दिल में होती है, दिखावे में नहीं। सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता नहीं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। बच्चों पर प्रेशर नहीं, उनका भरोसा बनिए। उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें खिलने दीजिए। स्ट्रेस फ्री बचपन, बेहतर भविष्य। तो बस सही समय पर सही तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शादी हो या पार्टी, उतना ही लें थाली में कि फेंका ना जाए नाली में। आपकी फेंकी हुई एक रोटी किसी भूखे का पेट भर सकती है। खाना बचाइए और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने दीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

कमाई कितनी भी हो, बचत जरूरी है। छोटी छोटी बचत ही बुरे वक्त का सहारा बनती है। इसीलिए अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा आज ही बचाना शुरू करें। आज ही इन्वेस्ट करें, कल को सुरक्षित करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जिंदगी के बाद भी किसी की आंखों की रोशनी या धड़कन बनिए। आपका ये एक फैसला किसी एक की तो जिंदगी बेहतर बना ही सकता है। अंगदान महादान। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।